का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा सुख होटल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जाप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार
1: चुप ना हो वई जे लाए रहा लिवतार
0: भुखया भुख न उतरी जे

0: भक्त निरंकार
1: घोर कांत घोर संग चोर हराम खोर
0: कमर कर जाए चोर संग गल बढ़
1: संग पापी पाप कर जाए संग कूड़े आर कूड़े फिराहे
0: संग मलेश मल पाखाहे

0: तीर्थ मल्लाओ
1: सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए
0: स्वास्थ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ
1: कवन सुवेला वक्त कवन कवन थत कवन वार
0: कवन सरति महाकवन चित होआ आकार
1: जे न पायो पंडती जे होवे लेख पुराण
0: वक्त न पायो कादिया जे लिखण लेख पुराण
1: वार न जोगी जान तुमाहु न कोई
0: क्या करता सिफ्टी को साजे आपे जाने सोई
1: शुक्र आखा क्यों साल

0: परमेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
1: पृथ्वी त्राण है, जाके करण मन मान्य है, जग जान्य है,
0: सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वस्य है, सर्वनाश्य है,
1: त्राहतर है, विषंग पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है, कल खंडस है, परते पर है, कर्णा कर
1: जप जप तप तप कृता कृत अमृता अमृत है,
0: अमृता अमृत है, कर्णा कृत है, कृता कृत है, धरणी
1: कृत है, ईश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत अमृता अमृत है,
0: जपाकृत है, अमृता अमृत है, नायक है, खलकायक है,
1: संग पर है, करुणालय नृपनायक है, सर्वपायक है,
0: पापंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,
1: सर्वा कृत है, कर्ता करें हरतार है,
0: परमात्म है।

0: शब्द कने ले।
1: पहला नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा,
0: साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब
1: कर शांत सुख मन आए वसे अज निच्छा सब पुजाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार हो, पंच दूत उदवास कीते काल कंठ कुमारिया, कह नानक तैं सो आदत कर अनाद वाजे,
0: नमाणी देहे नमाणी
1: रे वाचो क्या करे बेचारिया। समरथ कोई नाई कृपा।

मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर छानिश करदै करिया, सब बैरन को आज सिंगरिया, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवना त्याऊं, जो बार चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन शत्र मारे मारिया है, आप हाथ है मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, जो सदा हमारे पच्छा, श्रीस्त जो करे और अच्छा, राख लो मोय राखण हारे, साहिब संसहाय प्यारे, दीन बंदुष्ण के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए शिव जु अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव की ओ, बेद राज ब्रह्मा जूथी ओ, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जिछन उपजायो, आदि अंत कै अवतारा, सुई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिवगुन को शिवगुन सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिट्टी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धर तब देह पारा, जब या करख कर हूं कम हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असम, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बिदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जान।

भेन तोय तेती तुमरा लखा ना जाहि पसारा के विस जा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कई पूपा अंडर जेर सेत जकिनी उत्पुज खान बहर रस दिनी कहो फूल राजा वह बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी सृष दिखाय चंपव आज जुगा स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख सिंगरो दुष्जते उठ वत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तब शरणी परे तिनके दुष दुख त्वै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके का निकट नय है रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताव तन मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट शास वैस कह ना कोई एक बार दिन तुम्हें सुमारा काल फासते ताहि उबारा जिंदर नाम ते हारो कहा दारिद दोख दुष्टे रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दो

आई दुष्ट दोख ते ले बचाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दोता गावो हरी के रा मन जिनी वसाया कह नानक।

आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदारो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सुधार रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देह सुपावे। सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम अधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दया ए वड़ियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत उदवास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुजन को से नाम हर के लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सरोवर पागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। साध साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दिवस रात दोय दाई दाया खेल सगल जगत। चगी आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर। करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु जी का खालसा।

है मनमुख तृष्णा भुख ना जाए गुरमुख शब्दे रत्या शीतल होए आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख ना लगे आए नानक जे गुरमुख करे सो प्रवान है जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी हौ बलहारी तिन को जो

पावै तिल का मान, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगा तीर्थ मन नाओ। साब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होय। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुआन सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार।

सी रचना जन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जन उपाय कर कर वेख है कीता अपना जिव तिस दी वड़ियाई जो तिस भावै सोए कर सी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रह नरजाई मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करै विभूत खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश सया देश आद नील नाद नाहत जोग जोग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कड़ कड़ वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावै लेखे आवै भाग आदेश सया देश आद नील नाद नाहत जोग जोग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चिले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण जिफ तिस पावै तिवै चलावै जिफ वै फुरमान ओ वेखै ओना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश सया देश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया स्वेका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद नाहत जोग जोग एको वेस एक दूजी भाव लख हो लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए कीस सुन गलाया काश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जो न राज माल मन शोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोय राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग

अंतर तृष्णा आग गोरा के से उबरे होर मुठी तंदे ठग मुई परीत प्यार गया मोआ बैर विरोध तंदा थका हो मुई ममता माया क्रोध कर मिले सच पाइए गुरमुख सदा निरोध सच्ची कारे सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रदान सो दरगह पैदा जाए श्री राग महल पहला तन जल बल माटी पया मन माया मुहे मनूर औगन फिर लागू पए पूर बजावे तूर बिन शब्दे परमाइए दुबदा डोबे डोबे पूर मन रे शब्द तरो चित लाए जिन गुरमुख नाम न बूझिया मर जन में आवे जाए रहाओ तन सूचा सो आखिए जिसमें साचा नाओ पै सच राती दिहरी देहवा सच सुहाओ सच्ची नदर निहालिए बह न पावे ताओ साचे ते पवना पया पवने ते जल होए जल ते तेरे पवन साजिया कट कट जोत समोए निर्मल मैला नाथिए शब्द ते पत होए एह मन साच संतोखिया नदर करे तिस माहे पांच पूत सच पैरते जोत सची मन माहे नानक औगन विसरे गुर राखे पत ताहे श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार एक आवै एक जाव ही पूर परे हंकार मन हट मती बूढ़ी है गुरमुख सच सोतार गुर बिन क्यों तरिये सुख होए जो पावे त्यों राख तू मैं अवना दूजा कोई रहाओ आगे देखो ढो जले पाछे हरे अंगूर जिससे उपजे तिससे बिन से कट कट सच भरपूर आपे मेल मिलाव ही साचे मैल हदूर साहे साहे तुझ संभला कदे ना बिसारे हो ज्यो ज्यो साहब मन वसे गुरमुख अमृत पेओ मन तन तेरा तू तनी गर्व निवार समेओ जिन एह जगत पाया त्रिपवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मन मुख मुग्ध गुवार कट कट जोत निरंतरी बूझे गुरमत सार गुरमुख जिनी

चित लाए रहो नाम निधान ध्याई है मस्तक होवै भाग काज सब सवारी है गुर की चरणी लाग हमै रो भ्रम कटिया ना आवै ना जाग कर संगत तू सादगी अठसठ तीर्थ नाओ जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुहाओ जैथ मिलै हे वडियाईया वडाईया दरगह पावे थाओ करे कराए आ प्रभ सब किछ तिस ही हाथ मार आप आपे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ सरनागति प्रभ सर्व घटा

सच सोए राव सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चढ़नी जिन मन लगा सिवड़ भागी माए गुर दाता सम्राट गुर सुगुर सब मैं रह समाए गुर परमेश्वर पार ब्राह्मण गुर डुबदा ले तराए कित मुख गुर सलाही है कर्ण कर्ण सम्राट से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जनमन का पथ गुर परमेश्वर सेविया।

सोबिंसना मन की मत त्याग राव ज्यो कुकर हर काया तावे दै दिस जाए लोभी जंत न जानी भख भख सब खाए काम क्रोध मद में।

संगत मन वसै साच हर का नाओ सेवड़ भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ सिरा महला पन्ना सांच हर तन पूज सतगुर छो

क्या पाए सच करता सच करण हार सच संजम सच साहिब सच टेक सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच।

सच्चा सच्यार सिचाने जोन पंखिया जाली बदक हाथ गुराखे से उभरे हो फाते चुगे साथ बिन नावे चुन सटी है क्यों ना संगी सा कोई ना संगी साथ सच्चो सच्चा आखिया सच्चे सच्चा थान जिनी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख।

मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ धर्माता एक शब्दी बहु रूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती आपरसा एक लूक न देवे दरसा एक मन ही ज्ञाता काट न किन ही कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले

क्या कर्म कमाया, पूरब लिखिया फल पाया, नदर करे कै अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिनानो मनाया, तिने अंतर शब्द वसाया, सहिया से सुहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिना पाणे का रस आया, तिन बिच्चों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सबसे लय मिलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन बिच्चों एह करण चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगता हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखिए, अपनी नदर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिए, जित मिलिया नाम बखाणिए, सतगुर बाज न पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग।

रहन के बन जा रहा मित्रा बिख संचे अंध अज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपट लपटिया बन जा रहा मित्रा अंतर लहर लुपान अंतर लहर लुपान परानी सो प्रभ चेतन आवे सार संगत स्यों संग न किया बहु जोनी दुख पावे सिरजन हार विसारिया स्वामी एक निमख न लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिख संचे अंध अज्ञान चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा दिन नेड़े आया सोए गुरमुख नाम समाल तू बन जा रहा मित्रा तेरा दरगाह बेली होए गुरमुख नाम समाल प्राणी अंत

ਸਹੀ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾ ਜੀਓ, ਸਭ ਕੋ ਆਸਾ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਕਟਕੜੇ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਠਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਪਵਾਏ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਬਲਹਾਰਾ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਸਾਰਾ ਜੀਓ। ਮਹਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਨੰਦ ਵਾਜਾ ਸਹਿ ਸੁਹੀਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦਕੀਲਾ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਲਾਈ, ਆਸਣ ਉੱਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਏ ਰਿਹਾ ਸੰਤੋ, ਗੁਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਗਤ ਖਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਆਪੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਲੋਕਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ, ਆਪੇ ਤਖਤ ਮੈਂ ਸਚਨਿਆਈ, ਸਭ ਚੁੱਕੀ ਕੁੱਕ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਜਿਹਾ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਕਿਆ, ਤਿਸਰਸ ਆਇਆ ਜਿਨ ਭੇਦ ਲਹਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਵਸਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਮਹਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਿਤਕਰ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਚਿਤਕਰ ਸਗੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਅਨੰਦ ਬਿਨੋ ਤਿਤੈ ਕਰ ਸੋਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਕੰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਾਗੁਣ ਮੰਤੀ ਸਾਵੜ ਪਾਗਣ, ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਰਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣਾ, ਰੂਪਵੰਤ ਸਾਹ ਸੁਗੜ ਵਿੱਚ ਅੱਖਣਾ, ਜੋ ਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਹਜ਼ਾਰਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ, ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨੇ, ਸਾਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾਸ ਬਰਾਈ, ਜੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਮਹਿਮਾ ਤਿਸਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਫਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਅੰਗ ਲਾਏ, ਤਿਰਸ ਅਕਬਰ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਮਹਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਖੋਜਿਤ ਖੋਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਪਾਂਤ ਪਾਤ ਪਰ ਬਣੇ ਵਗਾਹੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਓ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਜੀਓ। ਖੜ ਜਾਤ ਵਿਚਰਤ ਮੋ ਗਿਆਨਾ, ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਨਿਗਲੀ ਕਰਮ ਆਸਣ ਚੌਰਾਸੀ, ਇਨਮੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ ਜੀਓ। ਅਨਕ ਵਰਗ ਕੀਏ ਜਪਤਾ ਪਾ, ਗਮਨ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਾ, ਕਿਨ ਹਿਰਦਾ ਜੰਤ ਨ ਆਵੈ, ਜੋਗੀ ਬੋੜ ਬੋੜ ਉੜਤਾ ਵੈ ਜੀਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਏ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੰਤਨ ਜੀਤਲ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਸ਼ੀ ਵਧਿਆ ਕਟ ਪੀਤਰ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਜੀਓ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਪਰ ਦੇਵਾ, ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਲਖ ਪੇਵਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਤੀ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਸੂਦ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭਾਤੀ ਜੀਓ। ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇ ਸਭ ਨਿਰਵੈਰਾ, ਕੋਟ ਜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜੈ ਪੈਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਹਰ, ਸੋਈ ਭਗਤ ਕਾਤੀ ਜੀਓ। ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰਾ, ਵੜ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਤਰੀਐ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤੀ ਜੀਓ। ਮਹਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਖੋਬਲ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਭਾਣਾ ਉਜੜ ਭਾਣਾ ਰਾਹ, ਭਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਵਾਹਾ, ਭਾਣਾ ਪਰਮ ਪਵੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਰਜ਼ਾਈ ਜੀਓ। ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਥਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਖਾਕ ਸੰਦਰਗੀ ਦੋ ਪਿਆਰੇ, ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮਨ ਆਗਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸੁਭਾਈ ਜੀਓ। ਮਹਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੈ, ਭੁੱਖ ਵਿਆ ਪੈ ਬੋਵਿਤਾਵੈ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵਟ ਸਮਰਥਾ, ਜੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ, ਚਿੰਤਾ ਰਹਿ ਰੋ ਗਈ ਹਾਂ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਬਾਰਕ ਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ, ਦੇਂਦੇ ਤੋੜ ਨਾਈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਜਿਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਏ, ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਸਾਲਾ ਜੀਓ। ਮਹਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਰੰਗੀਲੇ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਉਚਾ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੀਓ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਨੇ ਦਾਨ ਬੋਲੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਥਾ ਤੁਲੇ, ਕਾਲ ਮੂਰਤਾ ਜੁਨੀ ਸੰਭਉ, ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਠੰਡਾ ਦੀਵਾਂ ਜੀਓ। ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਰ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ ਜੀਓ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਏਸ ਮਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਰ ਪਰੀਵਾਂ ਜੀਓ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਪੇਖਤ ਤਰਿਆ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਝਸੇ ਪਲਕੜੀਆਂ, ਧਨ ਸੋ ਏ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਉਦਮ ਕਰਤਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਲ ਭ੍ਰਮ ਸਗਲਾ ਖੋਇਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਿਟ ਗਏ ਸਗਲੇ ਰੋਗਾ ਜੀਓ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਧ ਆਪ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਭ ਏਕੋ ਏਕੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਰ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਆ, ਹਰ ਪੈਨਣ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਥੀਆ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਮ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕਿਨੇ ਭੋਗਾ ਜੀਓ। ਮਹਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪੈ ਵਸਤਕ ਮੰਗੋ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਮਾਣ ਤੇ ਆਗੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਲਖਵਰੀਆ, ਦਿਓ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਓ।
तुम दाते तुम पुरख विदाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते भरसावाय अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरा पवन बनीता है आत्मगढ़ बिघंत नाही जीता तुम दाते तुम पुरख विदाते तुज जेवड़ अवर नसूरा जियो रेन संतर की मेरा मुख लागी दरों तो बिनसी कबुद पागी सच कर वैसराय गुण गाए नानक मिनसे कूरा जियो भज महला पंजमा विसर नाई बड़दाते कर कृपा भगत न संगराते दिन सराण ज्यो तुद ते आई ए दान मोह करना जियो माटी अंधी सुर समाई सब कुछ दिया भलिया जाई अंध बिनो चोई तमाशे तुझ पावै सो होना जियो जिसता दिता सब कुछ लैना चित्ती अमृत भोजन खाना से सुगाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो सब बोती जजत विसरे नाही सब मत दी जजत तुद ते आई सा सा तेरे गुण गावा ओट नानकुर चरणा जियो भज महला पंजमा शिव सलाण तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान त्यान जो तुद पाई सोई जब जो प्रभ जी पावै पाणा पूर गयाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावै जो साहब तेरा मन पावै तू संतन का संत मारे संत साहब मन माना जियो तू संतन की करे प्रतपाला संत खिले तुम संग गोपाला अपने संत करे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन का मेरा मन कुरबाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिनका संग सदा सुख पाया हर स्नान द्रव त्या गाना जियो महाज महला पंजमा तू जन निध हमी तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चातरक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम्हें संग मन लीना जियो ज्यों पारक पी खीर गावै ज्यो निर्धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत डंडा त्यों हर संग मन ए मन पीना जियो ज्यों अधियारा दीप प्रगासा परता चितवत पूर्ण आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मान रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया सा कृपाल हर संग गजाया हर हम राम हर के दासे नानक शब्द गुरु सज दीना जियो महज महला पंजमा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडार नहरिया अवर सा चक सगले देखे मन हर सब ते मीठा जियो जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर हुआ जो नाम रस पावै नाम निदान तुझे प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृत गाना जिन हर साध पाया सो नाय डलाना तुझे प्राप्त हर हर नामा जिस मस्तक पागीठा जियो हर एक साथ आया बरसाने बहु तेरे तिसलग मोत पाए कणेरे नाम निदाना गुरु पाई है को नानक विरली डीठा जियो भाज महला पंजमा निध सिद्ध रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गैर गंभीरा ला कोट कुछिया रंगरावै जो गुर लागा पाई जियो दर्शन बेगत पे पुनीता सलोदारे पाई मीता यकम गोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको गोजा सर्व पाए बड़भागी दर्शन को बिरला पाए ऊच पार गोचर ताना ओ मैर गुरु देखाई जियो घर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस हृदय बसेरा गुरु बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सह समाई जियो माज महला पंजमा कृपा ते हर हर त्यावू प्रभु दया ते मंगल गावू यूठत बैठत सोवत जागत हर त्याई सगले अवरदा जियो नाम औखद मोका साधु दिया किल काटे निर्मल थिया अंत भया निकसी सब पीरा सगल बिना से दरदा जियो जिसका यंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा साथ करे जन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए गुरु पिछत हो गई बुलाए सा सा सरगावै नानक सतगुरु ढक लिया मेरे पड़दा जियो महज महला पंजमा ओत पोत सेवक संग राता प्रपत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक है ठाकर ही खाया हर जियो घाट सर प्रभ सेवा लाया हुकुम साहेब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो साहेब भावा सेवक अंतर बाहर मार जियो तू दाना ठाकुर सबद जाना है ठाकुर के सेवक का रंग माना है जो कुछ ठाकुर का सो सेवका सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो अपना ठाकुर जो पहराया बोर न लिखा पुछ बुलाया ते सेवक नानक कुरबाणी सो कर गंभीरा गौर जियो माज महला पांजवान सब कुछ कर मैं बाहर नाही बार ढोलै सु परम पुलाही गुर प्रसादी जिने अंतर पाया सु अंतर बार सु इला जियो चिमचिम वर्षा अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द विचारा अंत बिन करे दिन राती सदा सदार किला जियो जन्म जन्म का विछड़िया मेला सतम जन्म का विछड़िया मिलया सह कृपा ते सुखा रहा सुमत पाए नाम ते आए गुरु को मेला जियो
जल तरंग जो जल समाया त्यों ज्योति संजूत मिलाया कहो नानक परम कटे पिगवाड़ा मोर न हुई है जो ला जियो माज महला पंजमा तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस बिटो जो मन तन तो धारा दे जियो तिस चरण पखाली जो उतरा मार्ग चाला नैन निहाली तिस पुरख दयाला है मन दीवा तिस अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रभला दे जियो सेवट पागी जिन तुम जाने सबका मदयाल पि निर्वाणे साधक संगुन भौजल तरिया सकल दूत उन साधे जियो तिनकी चरण भरिया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कहो तिस प्रभु अगा दे जियो माज महला पंजमा तू पेट शाख त्री फूली तू सुगुम आस तूली तू जल ने तू फेन बुद बधा तुद बने अवरन पालिया जियो तू सूत मणिये पी तू है तू गांठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ सोई अवर न कोई दिखा लिया जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्माण रसिया रंगराता है अपने कर्तव्य आपे जाना है आपे तू संभालिया जियो तू ठाकुर साहिब कुफने आपे तू गोत प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावै पूरी नजर निहालिया जियो माज महला पंजमा सबर सो बाणी जित नाम बखाणी गुरप्रसाद किन विरला जानी तन सो विड़ा जित हर गावत सुनना आहे ते परवाना जियो से नेत्र प्राण जिने हर दर्शन पेखा से कर भले जिने हर जस लेखा से चरण सो आवे जो हर मार्ग चले ओम बलतन संग बजाणा जियो सुन साजन मेरे मीत पे आ रे सा संखन माए उधारे किल काट हुआ मन निर्मल हो मिट गए आवन जाना जियो दो कर जोड़क बिनो करी जय कर कृपा डुबदा पत्थर ली जय नानको प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन भाणा जियो माज महला पंजमा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हुआ परमगत मेरी जनन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सू पया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरसो भर मृता कोई न जाए जियो दह तारी तिन सृजन हारे जी जंत सगले पित पारे मेहरबान कृपाल दयाला सगले तृप्त गाए जियो वण तिन त्रिपण कीतुन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसाय राधे मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजमा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधव तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सुमनी थाई ताप हो के हा काड़ा जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी उठ तू है मेरा माणा तुझ मन दूजा एवर न कोई सब तेरा खेल काड़ा जियो जी जन सब तुद पाए जी जित पाणा ते तित लाए सब कुछ कीता तेरा हो वह नाही किच असाड़ा जियो नाम त्याई मां सुख पाया हर गुण गाय मेरा मन शीतलाया गुरपुरै वजी वधाई नानक जिता बखाड़ा जियो माज महला पंजमा जी प्राण पर मन अधारा भगत जीवै गुण गाय अपारा हुन गुण निधान अमृत हर नामा हर त्याई त्याई सुख पाया जियो मन सा तार जो करते आवै सात संग जन मर मिटावै मास मनूर्त पूर्ण होवै भेट गुर दर्शाया जियो अगम गोचर कशमित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी खुदी मिटी चूका भूलावा गुरमन ही मैं प्रगटाया जियो अन्न मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम बखाना कृपाल स्वामी अपना नौ नानक घर मैं आया जियो माज महला पंजमा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तुम प्रीतम ठाकुर यत पारी तुमरे करतब तुम ही जानो तुमरी ओट कपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवै कथा सुनत सगल कथा सुनत मल सगली खोवै पेट संग साह संतन कह सदा जपों दयाला जियो प्रभु अपना साह साह समारो ए मत गुर प्रसाद मन तारो तुमरी कृपा ते हो प्रगासा सर्व मया प्रतपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चल तुम्हारे प्रट प्यारे दिख नानक भय निहाला जियो माज महला पंजमा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल शांत सह सुख पाया डांड भाई प्रभ आपे जियो सब कुछ बहुतो बहुत पाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करू मेरे दातारा जी जन त्रापे जियो सच्चा साहब सच्ची नाई गुर प्रसादी ते सदा ते आई जन्म पर पै काटे फूहा बिनसे सुख संतापे जियो साध साध नानक सा लाहे सिमरत नाम काटे सब पाहे पूर्ण आस करी खिन भीतर हर हर हर गुण जापे जियो माज महला पंजमा आओ साजन संत मीत प्यारे मिलगा मैं गुण अगम पारे गावत सुन सबे ही मुक्ते सुत्याईया जन्म किए जियो जन्म जन्म के किरख जावै मन चिंदे सगले फल पावै सिमर साहब सो सात स्वामी रिजक साहब सुखा दिए जियो नाम जपत सर्व सुख पाई है सब पवन से हर हर त्याई है जिनसे व्यास पार करामी कार्य सगले दिए जियो आए

दोवै मार जाए एकत कर आवै गुरमत सहज समावणिया करही माए दूजै पाए नेरा चानण होवै छोड़ै होमै मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता अंदर नाम त्यावणिया अंतर जोत प्रगट पा सारा गुरसाखी मिटिया अंधियारा कमल बेगा सदा सुख पाया ज्योति जोत मिलावणिया अंदर महल रतनी भरे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख वणजे सदा व्यापारी लाहा नाम सद सद पावणिया आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै केई के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसा बनिया मांज महला तीजा हरिया पै मेले सेवा सेवे सेव कराए गुर कै शब्द पाओ दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावणिया हों वारी जियो वारी सच सच्चा हृदय वसावणिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी सामन वसावणिया रहाओ आपै गुरदाता करम विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा मन सोह है गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा में एक थान सुहाया पूरे गुरहों में परम चुकाया अंदर नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया गुर कै शब्द एव गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे हर गुण गावे शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया जम जागाती दूजे पाए कर लाए नावो पल नावो भूले दे सजाए घड़ी मोहत का लेखा ले ले लेवै की रत्यो रत्यो मासा डोल कढ़ावणिया पेयड़े पिर चेते नाही दूजे मुठी होवै ताही खरी खरी को आलेओ करूप लिक लको लखनी सुपने पिर नाही पावणिया पेयड़े पिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन पिर राख्या कंट लाए शब्दे पिर रावै सेज सुहावणिया आपै देवे शाद सद बुलाए अपना नाव मन वसाए नानक नाम मिलै वडियाई अंदन सदा गुण गावणिया मांज महला तीजा उत्तम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै कर माए उदासा हर रंग रहै सदा रंग राते हर रस मन तृपता बणिया हौ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावणिया गुरमुख पढ़ै हर नाम सलाह है दर सच्चे सोभा पावणिया रहाओ अलख पयो हर रहया समाए उपाय ना कित ही पाया जाए कृपा करे ता सतगुर भेटै।

मिलाए गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए नानक नावै की सच्ची वड़ियाई नामो मन सुख पावणिया मांज महला तीजा निर्गुण सरगुण आपे सोई तत पछाण सो पंडित होई आप तरै सकले कुल तारै हर नाम मन वसावणिया।

नह कर्मी सो शब्द बिचारे अंतर तत् ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट मेट समावणया हो मैं करे नह कर्मी न होवै गुर प्रसादी हो मैं खोवै अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणया हर हर सर सागर निर्मल सोई संत जुग है नित गुरमुख होई इशनान करै सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणया निर्मल संसा प्रेम प्यार हर हर वसै हो मैं मार एहनस प्रीत प्रीत शब्द साचे हर हर सर वासा पावणया मनमुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इशनान करै पर मैल न जाई जीवत मरै गुर शब्द बिचारै हो मैं मैल चुकावणया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा कट चानण आप पछानणया आप पाए तै आपै वेखै सतगुर सेवै सो जन लेखै नानक नाम वसै कट अंतर गुर कृपा ते पावणया मांझ महला तीजा माया मोह जगत सबाया त्रै गुण दीसै मोहे माया गुर प्रसादी को बिरला बूजै चौथे पद लिव लावणया हो वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणया माया मोह जलाए सो हर स्यों चित लाए हर दर महली सो बा पावणया रहाओ देवी देवा मूल है माया सिमरत सास्त जिनो पाया काम क्रोध पसरिया संसारे आए जाए दुख पावणया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी।

तुद जेवड़ दाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावणिया जिस तू तुठा सो तुद त्याए साध जना का मंत्र कमाए आप तरे सगले कुल तारे तिस दरगाह ठाक न पा।

सर विचारो अखर नानक कहियो आपो लै प्रात हुआ जिस धात पौड़ी हौंटे ढाडी वे कार लाया राध्या का वातरू फरमाया ढाडी सचा मैल।

ते जाने आ, नज पाई कर घर ते जाने आ। जस तीर्थ मजन नाम, अदुपकार करो किस काम, ना नारायणी अंतर जाम। अन मन तो पर कर जाऊं, किस जाचो नाई को ताऊं, नानक गुरमत सह समाऊं। कौड़ी मल्ला पहला सतगुर मिला सुमरण दिखाए, मरण से अंतर पाए, घर मार गगनपुर पाए। मरण दिखाए आए नहीं रहना, हर जाप जाप रहन हर शरण रहो। सतगुरु मिले तो दुबदा पागा है, कवन विकास मन हर प्रभ लागा है। जीत मरा मार रस आगा, सतगुर मिले स संजम सूचा, गुरु की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, करम मिला जम का बहुम ऊंचा। गुर मिलया मिले अंक समाया, कर कृपा कर मैं दिखाया, नानक हो मैं मार मिलाया। गौड़ी मल्ला पहला किरत पया ना मेटा कोए, क्या जाना क्या का होए, ज्योतिष पाना सोई हुआ, यवन करना वाला दुआ। ना जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म धर्म तेरे नाम की जात रहाओ। तू ईवट दाता दीवन हार, तोड़ नाई तू भगत भंडार, किया कर्म नया वह रास, जियो पिंड सब तेरे पास।

जिड़िए वेर पराई जो है जीड़े करे चोरी भरे हरी हाँ चलिया तू पिछे रही है चुटड़ो ही है नरी तू काया रही है सुभनंतर तू क्या करूंगा माया कर चोरी जा मैं किस लिया तमन भला भाया हसना सुभा बलतना टोई है ला जन्म गवाया हम करी तो एली होई बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई राव ताजी तुरकी सोना रूपा कपड़ के रे पारा किसी ना ना चले नानक चढ़ चढ़ पे गुबारा कू जागवे वो मैं सब किस चाख्या एक अमृत ना तुम्हारा दे दे नींद वाले सारी पस मंदिर की टेरी सांचे सांझना दे किसी अंध जाना समेरी सोने लंका सोने माड़ी संपै किसे न गिरी सुन मूर्ख मन या जाना उगत से का पाना राव शाह मारा डागर पारा हम तिसके बिन जा रे जीव पिंड सब रात सकी मारा पे जी वाली गौड़ी चेती मल्ला पहला और पंच हम एक जना क्यों रखूं कर बार पना मारा लूटा नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना श्री राम नामा उचर मना आगा जलमदन बेखम पना रहाऊ आगा जामदार बेखम करना रहाऊ उसार मुडोली राखा द्वारा भीतर बैठी जातना अमृत केर करे नित कामना और टेन सो पंच जना ढाई मुडोली लुटिया देरा साधन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भा गए से पंच जना कामन लोड़ा सोना रूपा मृत लुड़े सुधा तक काम लोड़ा सोना रूपा मृत लुड़े सुखा दाता नानक भाव करे तन कारण जासी जाम प्रभा दाता गौड़ी चेती मल्ला पहला मुना दे गढ़ भीतर मुद्रा काया की जय खिंता था पांचले वस की जय रावल लेमन की जय डंडा था जोग जग जोग जगत एव पावस्ता एक शव दूजा और नास्त कंध मूर मन लावस्ता रहा मुंड मंडाया जे गुरु पाई है हम गुरु की ने गंगा था त्रिभुवन तारण हर स्वामी एक न चेत संदाता कर पटाम कली मल लावस सांसा मूर न जावस्ता एक चरणी जे चला वै लव लोभ की तावस्ता जब सुन रंजन रस मना काये बोला जोगी कपट कना रहो काया कमली हंस आना मेरी मेरी करत बिहानी था प्रणत नानक नागी दाजा प्रणत नानक नांगी दाजा फिर पाछा पुछताणी था गौड़ी चेती महला पहला औखत मंत्र मूर मन एक है जे करण दृढ़ चित की जा रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जा रे रहा मन

जय अंध ज्ञानी कदिन सी जय। इच्छुक मैं राम नाम निस्तारा बिरला को पाए गुरु शब्द विचार आए आप तरह सगले कुल उदारम। इस कलयुग में धर्म कर्म इस कलयुग में कर्म धर्म ना कोई कली का जन्म च नाल कह करो होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी।

नामृते भोजर उतर पारी सतगुरु श्री वैष्णव दासा होम मार कमल प्रकाशा अनुवाज निज करवासा नामृते करम उदासा सतगुरु श्री वैतन की सच्ची बाणी जुग जुग भक्ति आगो खाणी अंधन जपै हर सरंग पाणी नानक नामृते ने केवल बाणी गौड़ी गौरी महला तीजा सतगुरु से मिलया बटभाग संजोग हिरदय नामृत हर सपोग गुरु प्राणी नामृत आए जन जीत ला राम पाई राव ज्ञान ध्यान गुरु जपदा मीठा गुरु कृपा दे करै विरलै चखडीठा कर्म कांड बो करै चार मिना वै त्रिग त्रिग ओंकार मंदर वाद्यो माया भास जन्म जन नानक छूटा गुरु प्रकाश महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती मत है जैसी धरती उपर मेघला बरसत है क्या धरती मते पानी नाही जैसे धरती मते पानी बरगास्या बिन पगां बरसत बिराई बाबा।

ठेठ गाई गौड़ी गारे ही मल्ला चौथा निर्गुण कथा कथा हर की पंचमिल साधु संगत जन की तर पौजल कथ कथा सुन हर की तर पौजल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत्संग मेल आए हर सरसना नाम गुण गाई राव जो जन त्यावे हर हर नामा तिन दास दास करो हम नामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरा मन चित पावे जन पगरेण भागी पावे।

सुगम सतगुरु प्रीत गुर सुगम उपाए ते हर जन हर मिलो हम प्यारे जिन मिलया तू जाए हमारी राव जौन मिल बिछरे गो प्रीत लगावे कामन पी जा फिर करे आवे हर जन पी जा हर जस गावे सारंग प्रीत मसै जल तारा नर पीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपै निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिलिया गलाटे जन नानक प्रीत साध भग चाटे

हमारी, हर दर्शन दीवार आस तुम्हारी, कर कृपा लोज पूर हमारी राव। चकुई प्रीत सूरज मुख लागै, मिला प्यारे सब दुख ते आगै, गुरसुख प्रीत गुरु मुख लागै, बछरे प्रीत खीर मुखाए, हृदय विकसै देखै माए, गुरसुख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोकाचा, मिर चाहे कूरा कज पाचा, जन नानक प्रीत त्रित गुर साचा। गौड़ी ग्वारी मल्ला पंजम, गौड़ी ग्वारी मल्ला चौथा, सबकर सेवा सफलै बनी, जिस बिन हरा नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछा छूटी घणी, गुर सकार बोलो मेरे पाई, हर बोल सब पाप लै जाई रहो। जब गुर मिलया तब मन से आया, तावत पांच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया, सतगुर भगत ऊर्ज ना मुख लाई, तनकूट ते आगे हर बुलाई, ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र।

है जैसे हम सतगुरु आख लिए चढ़ाई। तू गुरु पिता तू है गुरु माता तू गुरु बंध मेरा सगा सगाए जो अमरी विद होती मेरे सतगुरा सावे तुम्हारे जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुरु सतगुरु संग कीरे हम तापे धन धन गुरु नानक जन के रहा जिस मिलया चूके सब सुख संतापे गौड़ी बैरा गुण मल्ला चौथा कंच नारी मैं जीवन उपता मुँह मीठा माया कर मंदिर घोड़े कुजी मन हरस राया

हर गुण गावाही। महला चौथा कौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभु की नी। मेरे मंत्र मुख हर बोली, गुरमुख रंग पयाद गूढ़ा, रंग पीनी मेरी चोली। अपने हर प्रभु की आऊं गोली, जब हम हर से जीवन में कर दी न जागत गोल बोली। हराओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय दो टंडोली। हर हर रूप जब जो सबाई, हर निकट बसाया हर कोली। हर हर निकट बसाया सब जाका है, परम पर पुरख अतोली। हर हर पड़ गई गुर पूरा है, सिर बेच गुर पै मोली। हर जी अंतर बार तुम शरणागत, तुम बड़ पुरख बडोली। जय नानक आंदन हर गुण गावै, मिल सतगुर गुर बेचोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन परम पर स्वामी। जगदीश्वर पुरख वेदाते, जित मार्ग तुम प्रेरोप स्वामी, तित मार्ग हम जाते। राम राम मन हर से तीराते, सत्संगत मिले राम रस पाया। हर राम नाम समाते रहो, हर हर नाम हर हर जग आवखद। हर हर नाम हर जाते, तिनके पाप दुख सो मिन से, जो गुरमत राम रस गाते। जिनको लिखत लिखे तुरमस्तक, ते गुर संतोख सर नाते। दुर्ग मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग रहते। राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकर, तुम जेवड़े बना दाते। जनान नाम रे तीवै, हर जपिए।

लागे ते साकत नर जम घुटिया से साकत चोर जिन नाम सारिया मन तिनकर निकट न पिटिया। मेरे मन से वो लख निरंजन नर हर जे सेवा लेखा छुटिया जन नानक हर पूरे किए हे खिरमासा तोर न कठिया। गौड़ी पुरी महला चौथा हमरे प्राण वसकत प्रभ तुमरा है मेरा जीव पिंड सब तेरी दया करो हर दर दिखावो मेरा मंतन लोच कनेरी राम मेरे मंतन लोच मिलन हर केरी गुरु कृपाल कृपा किंचित गुरु कीनी हर मिलिया आए प्रभु मेरी राव। जो हमरा मन चित है स्वामी सब तुम्हार जानो मेरी अंदर नाम जबी सुख पाई नित जीवा हसर तेरी सगुर दादा पंथ बताया हर मिलिया आए प्रभु मेरी अंदर अंत पया बड़ भागी सब आस पूजी जन केरी जगना जगदीशर करते सब असकत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर आखो पै जन केरी। गौड़ी पुरी मल्ला चौथा ए मनवा खे नाटक है बोरंगी दह दह दिस चल चल हांडे गुरपुरा पाया वड़ भागी हर मंत्र दिया मन टांडे राम हम सतगुर लाले कांडे रहो हमरा मसक दाद गाना हम करज गुरु बो सांडे पर कुआर पुन भोगिया बोध उतर तार पुराडे जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गांडन गांडे जो पानी कागत बिनस जात है त्यो मन मुह गर्भ गलांडे हम जानिया कछु जन जाना आग है ज्यो हर आख त्यों ठांडे हम पूर चू कर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिख लिखे गुर पाया मन हर लो मंडल मंडाए

गोविंदा नितलैला मनस जियो। हरिया पो पाए हरिया पे वेखा हरिया पे कर लाया जियो। खावे भगत टूट न आवे ना फक्का पाया जियो। एक राजे तख्त पाए निक सुखिए एक ना भिख मंगाया जियो। सब इको शब्द वरता मेरे गोविंदा ते नानक नाम ते आया जियो। गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा रंग रता मन माही जियो। रंग नाना लिखिया मेरे गोविंदा गुरपुरा लख लगाई जियो। हर नाम प्रकाशया मेरे गोविंदा सब दाल दुख लै जाई जियो। हर पद ऊतम पाया मेरे गोविंदा बड़ भागी नाम समाई जियो। नैणी

निरपौ होए आठ पह सिमरो प्रभ नाम अनेक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की शरणी पाहे कोट कलंक खिन मह मिट जाहे बेमोहताज पूरा पातशाह प्रभ सेवक साचा बेसाह गुरपुरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म समराथ गौड़ी ग्वारेरी महला पंजमा गुर प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण चरै प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सहज सवाए रहाओ सोई पछाता जिने उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बहा पकड़ ली नोकर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुनः चार हर हर नाम जी प्राण अधार साचा तन पायो हर रंग दुतर तरे साध कै संग सुख बैसो संत सजन परवार हर तन खटियो जा का नाहे सुमार जिसे प्रापो जिस गुर दे नानक बिरथा कोई नाहे गौड़ी ग्वारेरी महला पंजमा हस्त पुनीत होहे तत्काल बिन सजाए माया जंजाल रसना रमो राम गुण नीत सुख पावो मेरे भाई मीत लिख लेखन कागद मसवाणी राम नाम हर अमृत बाणी रहाओ एह कार्य तेरे जाहे विकार सिमत राम नाही जमार धर्म राय के दूत न जो है माया मग न कछुए मोह उदरे आप तरे संसार राम नाम जप एक अंकार आप कमाओ अबरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहु निदान सोई पुरख जपै भगवान आठ पैर हर हर गुण गाओ कहा नानक हां तिस बल जाओ रा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजमा चौपदे दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यो मन रचना कहो गुसाई मिलिए कहे जो विवर्जित तिस स्यो नेह रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत हो बन मन लगे न राती वावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुना दोहा सिरा का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वारेरी महला पंजमा कल जुग में मिल आए संजोग जिचर आग्या तिचर भोग भोग जलै न पाइये राम स्नेही केत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइये प्रै संग न पावे बहुत जोन पवाइये सील संजम प्रै आग्या माने तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक ज्यो जिन प्यो परमेश्वर कर जानिया संतन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वारेरी महला पंजमा हम तनवंत भागट सच नाए हर गुण गावे सहज सुभाए रहो पियू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पिया निदाना रतन लाल जाका कछु ना मोल परे भंडार अखूट अतोल खावे खर्चे रल मिल पाई तोड़ ना आवे बद दो जाई कह नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लिया रलाए गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चुका देखिया भरपूर सतगुर अपने को बलिहारे छोड़ न जाई सर पर तारे रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा पला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गही जय कह नानक गुर मंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजमा जाका मीत साजन है समिया तिस जन को कहो का की कमिया जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी दुख दर्द प्रमुता का पागी रहाओ जाको रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जाका कहया दरगाह चले तिसो ते किसको नदर ले आवे तले जाका सब किच ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जाके दुख सुख जाके दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा कहां ब्यापे सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ जाके अचिंत बसे मन आए ताको चिंता कतहु नाहे जाके विनस्यो मन ते परमा ताके कछु नाही डर जमा जाके हृदय दियो गुरनामा कह नानक ताके सगल निधाना गौड़ी महला पंजमा
अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने बिरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त इसल पुंचा रहाओ, अनहत बाणी थान निराला, ताकि तुन मोहे गोपाला, तह सहज अखारे अनेक अनंता, पा ब्रह्म के संगी संता, हरक अनंत सोग नहीं बिया, सो कर गुर नानक को दिया। गौड़ी महला पंजमा। कवन रूप तेरा आरादो, कवन जो काया ले सादो, कवन गुण जो तुझ ले गावो, कवन बोल पावा मरी जावो रहो, कवन स पूजा तेरी करो, कवन स बिद जित पाव जल तरो, कवन तप जित तपिया होए, कवन स नाम हम मैं मल खोए, गुण पूजा ज्ञान त्यान नानक सगल कहाल, जिस कर कृपा सतगुर मिले दयाल, तिसी गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ। गौड़ी महला पंजवा। आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं जाका को लपटायो, आपन नाम सतगुर ते पायो रहाओ, सुत बनिता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोए ना रूपा फुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कह नानक जो गुर बख्श मिलाया, तिसका सब किच जाका हर राया। गौड़ी महला पंजवा। गुर के चन ऊपर मेरे माथे, ताके दुख मेरे सगले लाथे, सतगुर अपने को कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग मानी रहाओ, चन रेन गुर की मुख लागी, अहंग बुद्ध तिन सगल त्यागी, गुर का शब्द लोगो मन मीठा, पार बांध ताके मोहे डीठा, गुर सुखदाता गुर करतार, जी प्राण नानक गुर आधार। गौड़ी महला पंजवा। रे मन मेरे तू ताको आहे, जाके ऊना कछ होना है, हर सा प्रीतम कर मन मीत, प्राण अदार राखो सद चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव, आद पुरख अपरंपर देव, तिस ऊपर मन कर तू आसा, आद जुगाद जाका परवासा, जाका प्रीत सदा सुख होए, नानक गावे गुर मिल सोए। गौड़ी महला पंजमा। मीत करे सोई हम माना, मीत के कर्तव कुशल समाना, एका टेक मेरा मन जीत, जिस किश करना सो हमरा मीत रहाओ, मीत हमारा बेपरवाहा, गुर कृपा ते मोह असनाहा, मीत हमारा अंतर जामी, समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजमा। जाको तुम पहे समर्थ अंगा, ताको किछ नाही का लंगा, माधो जाको है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी रहो, जाके हृदय ठाकुर होए, ताको सहसा नाही कोए, जाको तुम दीनी प्रभ तीर, ताके निकट न आवे पीर, कह नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया।

ऊच असान तब सहजे पायो दुख दाद पहम पौ नसया कन हर नानक मन वसया गौड़ी महला पंजमा कर कट हर रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग तहबो पलो समो सिमन की बरिया सिमत नाम पह पार उतरिया रहाओ नित संतन का दर्शन पेख प्रभ अविनाशी मन मह लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मिटाए चरण कमल ठाकुर उर तहार दुर्लभ दे नानक निसार गौड़ी महला पंजमा जाको अपनी कृपा तारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापै सिमरत नाम परम पौ पागे रहौ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल करत जन सुहै ताको माया अग न पोहै मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजियले अव जंजाल गौड़ी महला पंजमा छाड़ सियानप बहु चतराई गुरपुरे की टेक टिकाई दुख बिन से सुख हर गुण गाए गुरपुरा पेटिया लिव लाए रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र मिटे बिसूरे उतरी चेंत आनंद पे गुर मिलत प्रगास कृपाल कर कृपा काटे जम जाल कह नान गुर पूरा पाया ताते बहन ब्यापे माया गौड़ी महला पंजमा राख लिया गुर पूरे आप मन मुख को लागो संताप गुरु गुरु जप मीत हमारे मुख उजल हो वह दरबारे रहाओ गुर के चन हृदय बसाए दुख दुश्मन तेरी हते बलाए गुर का शब्द तेरा संग सहाई दयाल पय सगले जी पाई गुर पूरे जब कृपा करी पनत नानक मेरी पूरी परी गौड़ी महला पंजमा अनकर सा खाए जैसे ठोर मोह की जेवरी बाध्यो चोर मृतक देह सा संग बिहुना आवत जात जोनी दुखी न रहो अनेक बसर सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम निहपल मानुख जपे नहीं नाम कह नानक जाको पहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला गौड़ी महला पंजमा कल कलेस गुरु शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे पै बिन से निरपोहत आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ चरण कवल हृदय अंतर तारे अगन सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कह नानक दिस गुर के बलेहारी जिस पेटर गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी शरणी परो मन तन अपना आगे तुरो अमृत नाम पिबो मेरे पाई सिमर सिमर सब तप्त बुझाई रहाओ तज अभिमान जन मन निवारो हर के दास के चन नमस्कारो सास सास प्रभ मने समाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप जिस मस्तक पाग कह नानक ताकी चरनी लाग गौड़ी महला पंजमा सूके हरे किए खिन माहे अमृत दिश संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेव को दिनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आसा करी दया सतगुर गणतासा दुख नाठे सुख आए समाए टील न परी जा गुर फुरमाए इच्छ पुनी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजमा ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पय किनी प्रभदात प्रभ कृपा ते पय सुहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिनस्या थाम सहज सुभाए बोले हर बाणी आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी दुख दर्द जम नेड़ न आवे कह नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजमा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्राह्म निर्जोग ओह वेला को हों बल जाऊं जित मेरा मन जपे हर नाओ रहाओ सफल मूर्त सफल ओ करी जित रसना उचरे हर हरी सफल ओ माथा सांत नमस्कारस चरण पुनीत चले हर मार्ग कह नानक पला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजमा
गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अन कोए, मारे राखे एको सोए रहाओ। गुर के चन हृदय उर धार, अगन साग जप उतरे पार, गुर मूर्तियों लाए त्यान, इहा उहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजमा, जिस सिमर

दुख सब जाए, नाम रतन बसे मन आए। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। रहाओ एक सबिन नाही दूजा कोए, जाकी दिश सा सुख होए। साजन मीर सखा कर एक, हर हर अखर मन महलेख। रव रहा सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा। पौना आपे तेरी शरणा, जो तुद पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रपाणा। अगन सागर महा व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुर पाया। राख ले प्रभ राखन हारा, कहो नानक क्या जंत बिचारा। गौड़ी महला पंजवा, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, तुमरी कृपा ते दरगा थाओ। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए। रहाओ तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ पागे। पा ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा। नाम बिहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी। नाम बिहून त्रिग देह बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग, परत बिहून कहां सुहाग। नाम विसार लगे अनक स्वाए, ताकि आस न पूजे काए। कर कृपा प्रभ अपनी दात, नानक नाम जप है दिन रात। गौड़ी महला पंजवा, तू समरथ तू है मेरा स्वामी। सब किच तुम ते तू अंतर जामी। पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शन उदरे जन कोट। रहाओ जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे। जो किच बाते सब तेरा पहना, हुकम बुझे सो सच समाणा। कर कृपा दीजे प्रभ दान, नानक सिमरे नाम निधान। गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाइये बडभागी। जाकी राम नाम लिव लागी, जा कै हर बसया मन माही। ताको दुख सुपने पी नाही। रहाओ सर निधान राखे जन माहे, ताके संग किल बिख दुख जाए। जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए। कर कृपा प्रभ बिनो सुनी जय, दास की तूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमत रिजाए बलाए। सर्व कल्याण बसे मन आए, पाज मन मेरे एको नाम। जी तेरे कै आवे काम। रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपुरे का निर्मल मनता। छोड़ उपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख। बिखम सागत जई जन तरे, नानक जा को नदर करे। गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तहारे। पूरे सतगुर मिलन सारे, गोविंद गुण गाव मेरे भाई। मिल साधु हर नाम ते आई। रहाओ दुलाब दे होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान। हर सिमत पूरन पद पाया, साध संग पै पर मिटाया। जत कत देखो तत रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए। गौड़ी महला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव। कर कृपा लागो तेरी सेव। रहाओ चरण कमल हृदय उरतहारी, मन तन धन गुर प्राण अधारी। सफल जन्म होवे परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान। संत धूर पाइये बड भागी, नानक गुर पेटत हर सिउ लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा, करे दोह कर्म दिखावे होर। राम की दरगाह बादा चोर, राम रमे सोई रामाणा। जल थल मही एक समाना। रहाओ अंतर बेख मुख अमृत सुनावे, जम पुर बादा चोटा खावे। अनक पर्दे मह कमावे बिकार, खिन में प्रगट होए संसार। अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता। कौड़ी महला पंजमा, राम रंग कद उतर न जाए। गुरपुरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा। लाल रंग पूर्ण पुरख विधाता। रहाओ संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया। गुर रंगे से पये निहाल, कहो नानक गुर पये है दयाल। गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विखनासे। सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परो।
ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ਰਹਾਓ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਛ ਭਉ ਨਾ ਪਰਾਤੀ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਛੋਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਪੀਵੇ ਜਨ ਨੀਤ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਹਰ ਚਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਪਹਗਾ, ਹਰ ਤਨ ਕੋ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਸੇ ਨਿਵਾਜੇ ਸੋ ਜਨ ਸੂਰਾ ਰਹਾਉ, ਜਾ ਕੋ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈ, ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦਾ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਨਾਮ ਰਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਾਟੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਪਦਾ ਕਾਟੀ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਸਿਮਤ ਸਭ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ਼, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਵਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਬੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਰਹਾਉ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਿਲਵਕ ਸਭ ਤੋਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੇ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ, ਤਿਸਿਓ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਮਾਏ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਆਨ ਕਮ ਲਾਗੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗੇ ਰਹਾਉ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ ਲਾਗਤ ਅਨਲੋਭਾ, ਦਾਸ ਸਲਾਮ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਖਾਵੈ ਖਾਨ ਪਾਨ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੁਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਧਿਆਨ, ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਹਿ ਜਾਈ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਧ ਮਾਹੇ ਬਸਾਈ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ, ਜੀਵਨ ਮਨ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧੂ ਤੂਰੇ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੂਕਰ ਪਾਏ, ਤਿਸਨੋ ਜੋਹੇ ਦੂ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਬੇਮੁਖ ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਜੂਨਾ ਰਹਾਉ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸਗਲ ਬਪਰੀਤ, ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਤਹਰਿਆ, ਸੋਈ ਠਾਕੁਰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਬਦੇ ਬਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ, ਨਾਨਕ ਉਦਰ ਕਿਰਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਬੰਧਨ ਕਟ ਤਰੇ ਹਰ ਨਾਏ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਕਤ ਪਦ ਦੀਤ, ਐਸਾ ਮੀਤ ਕਰੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਥ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਹਾਉ

मिल नानक हर अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, आठ पै संगी बटवारे, कर कृपा प्रभ ले निवारे। ऐसा हरस रमो सब कोए, सर्व कला पूर्ण प्रभ सोए रहाओ। महा तपत सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार। अनक बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाहे। उक्त सियानप इससे किछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। बड़पागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहता पाइए रहाओ। हर के चरण हृदय उरतार, पव सागर चर उतरे पार। साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोबत हर संग पहरुआ, जाके सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे शाकी मन में टेक। महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजमा, हर नाम जन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के जन हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विखन से। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दिश न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजमा, पौषर नाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चन हर राते। पै पंजन परमाना बसाही, डरपत डरपत जन्म बहुत जाही रहाओ। जा कैरी दे बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम। जन्म जरा मृत हजिस बास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा परव एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजमा, बाहर राख्यो हृदय समाल, कर आए गोविंद लै नाल। हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम के रंग रहाओ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलविक सब हिरिया। सोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मत। चरण कमल हृदय मह जाप, नानक पेख जीवे परताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। बिपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरिए दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ना नेरे। सो बडभागी निचल थान, जय जपिए प्रभ के वरना। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोबिंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। साधु संग सिमर गोपाल, बिन्नावे झूठा तन माल रहाओ। रूप बंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मानिया प्रभ का पाणा। जग में आया सो परवान, कटकट अपना स्वामी जान। कह नानक जाके पूरन पाग, हर जानी ता का मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास्यों साकत नहीं संग। ओ बिखई ओस राम को रंग रहाओ। मन असवार जैसे तुरी शिंगारी, जो का पुरख पुचारे नारी। बैल को नेत्रा पाए दुहावे, गऊ चर सिंह पाछे पावे। गाडर ले काम तिन कर पूंजी, सौदे को तावे बिन पूंजी। नानक राम नाम जप चीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवा, सा मत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत बीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट। रहाओ सो तन निर्मल, जित उपजे ना पाप। राम रंग निर्मल प्रताप, सा संग मिट।

जात विकार सब ते उच एहो उपकार प्रेम भक्त राते गोपाल नानक जाचे सादरवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी मेले पूरन बड पागी रहाओ परता पेख बिकसेओ ज्यो नारी त्यों हर जन जीवे नाम चितारी पूत पेख ज्यो जीवत माता ओत पोत जन हर स्यों राता लोभी अंध करे पेख धना जन चरण कमल स्यों लागो मना बिसर नहीं एक तिल दातार नानक के प्रप्राण आधार गौड़ी महला पंजवा राम रसायन जो जन गीदे चन कमल प्रेम भक्ति बीदे रहाओ आन रसादि से सब शार नाम बिना नेह फल संसार अंध कूप ते काडे आप गुण गोबिंद अचाज प्रताप बण त्रिण ते पवन पूरन गोपाल ब्रह्म पसार जी संग दयाल कह नानक सा कथनी सार मान लेत जिस सिर जनहार गौड़ी महला पंजमा नित प्रत नावण राम सर की जय चोल महारस हर अमृत पीजे रहाओ निर्मल उद गोविंद का नाम भजन करत पूर्ण सब काम संत संग तह गोष्ट होए कोट जन्म के किल वेखोए सिमरे साध करे आनंद मन तन रविया परमानंद जिसे प्राप्त हर चन निधान नानक दास तिसे कुर्बान गौड़ी महला पंजवा सो किछ काजित मैल न लागे हर कीर्तन में इह मन जागे रहाओ एको सिमर ना दूजा पाओ संत संग जप केवल नाओ कर्म धर्म नेम व्रत पूजा पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा ताकि पूर्ण होई काल जाकी प्रीत अपने प्रभ नाल सो बैसनो है अपर अपार क्यों नानक जिन तजे विकार गौड़ी महला पंजवा जीवत छाड़ जाहे दीवाने मोया उनते को बरसाने सिमर गोबिंद मन तन तुर लिखिया काहू काज न आवत बिख्या रहाओ बिखे ठगौरी जिन जिन खाई ताकि तिश्ना कबहू ना जाई दारन दुख दुतर संसार राम नाम बिन कैसे उतरस पार साध संग मिल दोए कुल साध राम नाम नानक आराद गौड़ी महला पंजमा गरीबां उपर जे खिंजे दाड़ी पार ब्रह्मसा अग्न में साड़ी पूरा न्याव करे करतार अपने दास को राखनहार हाओ आज जुगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज बढ़ताप दिन मारे अजे रखे ना कोई मार आगे वाछे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शरण नानक हर नाम ते आए गौड़ी महला पंजवा महजर झूठा की तोन आप पापी को लागा संताप जिसे सहाई गोबिंद मेरा तिसको जम नहीं आवे नेरा रहा साची दरगा बोले कूड़ सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़ रोग व्यापे कर दे पाप अदली होए बैठा प्रभ आप अपन कमाए आपे बादे दर्ब गया सब जी कैसा थे नानक शन परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवा जन की तूर मन मीट कटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ अहंग बुद्ध मन पूरत थाई साध तूर कर सुध मंजाई अनिक जलाजे धोवे देही मैल ना उतरे सुध न तेही सतगुर पिट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पौ काल मुक्त भुगत जुगत हर नाओ प्रेम पद नानक गुण गाओ गौड़ी महला पंजवा जीवन पदवी हर के दास जिन मिलिया आत्म परगास हर का सिमर सुन मन कानी सुख पावे हर द्वार पनानी रहाओ आठ पहर ध्याइये गोपाल नानक दर्शन देख निहाल गौड़ी महला पंजवा शांत पई गुरु गोविंद पाई ताप पाप बिन से मेरे भाई रहाओ राम नाम नित रसन बखान बिन से रोग पहे कल्याण पार ब्रह्म गुण अगम विचार साधु संगम है निस्तार निर्मल गुण गावो नित नीत गई ब्याद उबरे जन मीत मन बच क्रम प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी शरणाई गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रगास किया गुरदेव परम गए पूरन पई सेव रहाओ शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी नानक नाम जपे सो जीवे साध संग हर अमृत पीवे कौड़ी महला पंजवा तन ओहे मस्तक तन तेरे नेत तन ओहे भगत जिन तुम संग हेत नाम बिना कैसे सुख लही है रसना राम नाम जस कही है रहा
ਜਾਓ, ਤਿਨ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਨਿਰਵਾਣ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਮਸਲਤ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਖੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ, ਐਸਾ ਰਾਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ, ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਹਾਓ।

अनाथ है कर प्रतपाला, जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत के पाछे, कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछे। कौड़ी महला पंजवा, हाँ ताके बलिहारी जाके केवल नाम अधारी रहाओ, मह माता की कित गणिये जनपाल ब्रह्म रंग राते, सुख सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर ना दाते, जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा, उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा, ताके चरण प्रोता जीवा जन के संग निहाला, भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला, राज जोवन अब जो दिसे सब किछ जुग में काटिया, नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुरु शब्द बुझायो, रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन में रविया, निमुख निमुख नमस्कारा दिखिया गुर की मुंदरा कानी, दिड़ियो एक निरंकारा पांच चेले मिल भये इकतरा, एकस के बस किए दस बैरागन आज्ञाकारी, तब निर्मल जोगी थिए परम जराए जराई भी पूता, पंथ एक कर पेख्या सहज सुख सो की नी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लेख्या जय पो नाही तहां आसन बाध्यो, सिंगी अनहत बानी तत् विचार डंडा कर राख्यो, जुगत नाम मन पानी, ऐसा जोगी बड़ भागी पेटे माया के बंधन काटे, सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे।

अंधकार मिट्यो तह तंते गुर शब्द दीप परगासा प्रम की जाली ता की काटी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर पेट्यो हर

मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंध कु में हाथ राखो कछु सियानप उक्त न मोरी रहो कर्ण करावन सब किच तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गत में तुम ही जाने से सेवक दिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दिश ओ चंद चकोरी राम शांत मैं भेद किछ नाही एक जन कई मैं लाख करोरी जाके ही ए प्रगट प्रभ होआ अंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊचे सुखदाते प्रप्राण अदोरी नानक प्रभ की जय कृपा उन संतन के संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती राती राते संतो निवाहे ले हो मोको पुरख विदाते ओड़ पहुंचावो दाते रहो तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख विधाते राखो शन अनाथ दीन को करो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भाते कर के पजिस राखो संगे ते ते पार पराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किछ तुम रे हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण कीजे हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल तरापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मोको सतगुर पय दयाल देव रहाओ काट जेवरी क्यों दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचार्य गुरे दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अन पै ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुखे ठाउ गवायो जो सुप्रसन्न पहे प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किछ आवत ना किछ जावत सब खेल ती कियो हर रायो कह नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हरनायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ताकी ओट गी जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हरता को नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बु सुख पाइये रे जो प्रभ करे सोई पल मानो सुख दुख उही त्याइये रे कोट पतित उदारे खिन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे सब को मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागरे देन दे तोट नाही तिस करते पूर रहो रतनागरे जाचिक जाचे नाम तेरा स्वामी कटकट अंतर सोई रे नानक दास ता की शरनाई जाते ब्रिथा ना कोई रे रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबू न मनो बिसारे इहां उहां सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रहा वहां कष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल शांत सुख हर शरणी जलती अग्निवारे गर्भ कुंड नरक ते राखे भवजल पार उतहारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन नहारे काम क्रोध लो मुहे मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे ना गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एह रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाओ सुत संपत बनिता बिनोद छोड़ गए बहु लोग भोग है वर गै वर राज रंग त्याग चले हो मुड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन तर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कह नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन तर तरवे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहा कल कलख अधियारियां गुर दियान दीपक उजियारियां बिख बिखिया पसरी अतकनी उबरे जप जप हर गुनी
मतवारो माया सोया गुर पेट परम पौख होया कहो नानक एक ते आया कट कट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुरे टेक रहाओ अनेक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले लाया मारे पंच बिखादिया गुर कृपा ते दल सा दया बख्शीश बजो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से पले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जी रे होला नाम का अवर जे कन करावनो तिन मैं पौ है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है बड़े पाग हत्याई है लाख हिकत नहीं जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहंग बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ कर्णक रावन तुही एक जी जांत की तुही टेक राज जुवन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुण इहा उहा तुम रखे गुर के पाते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही दान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधिये संत संग हर मन वसै परम मोह पौसा दिए रहाओ वेद पुराण सिमरत पने सब ऊच विराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक कै पै रहत कीन लाख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरहै बल बुद्ध स्यानप होमे रही हर साध शन नानक गही

हर हर हर मुख कहिए, हम ते कछु न होवे स्वामी, जो राखो त्यों रहिए रहाओ। क्या किच करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे, जित तुम लागो तित ही लागा, पूर्ण खसम मारे। करो कृपा सर्व के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती वी हर पह, अपना नाम जपावो। या गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दीन दमोदर दीन दयाल दमोदर आया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत बशल तेरा बेद रखाया जियो, पूर्ण सब नी जाई जियो, क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकानी जियो, संता दासी सेवा चरनी जियो, हे जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निव निव लागो पाई जियो, पोथी पंडित बेद खुजंता जियो, होए बैरागी तीर्थ नहवंता जियो, गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपो नाम त्याई जियो, पे कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतित पवित लग गुर के पैरे जियो, प्रम पौ काट के निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाम पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोवा बंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जिन नानक सहज समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस सा सा चितारे जियो, संत देओ संदेसा पै चरनारे जियो, तुद बिन कित बिद तरिए जियो, संत तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, बाण तिन त्रिपवन सुख परमानंदा जियो, से सुहावी ए मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन एह सुख लहिए जियो, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच्छ पुनी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सहिए जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो, पे तारे जियो वे बारे जियो, बिसना ही प्राण अधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, हे निदान जपे बड़ भागी जियो, नाम निरंजन एक लिव लागी जियो, गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पहर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा शाह भगत बन जा रा जियो, हर तन रास सच बपारा जियो, जन नानक सद बलिहारा जियो, रा गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान, जो तुम्हारे सुख बसा सच शब्द निशान रहाओ, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, कदी सोत न लदिया माया मुहड़िया, देह बुझारत सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया, एक सो दो चौह क्या गणी सब इकत साध मुठी, एक अद नाए रसीड़ा का बिरली जाए बुठी, भगत सचे दर सोहन दे अंध करे दिन रात, रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांज, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहर आरा दिए पूर्ण सतगुर ज्ञान हव,

मेरे ठाकुर अगम अगाध भय कृपाल गुसाइया नठे शोक संताप तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप गुर नारायण दयो गुर गु सच्चा से जनहार गो तुठे सब किछ पाया दे नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूर्ण होए कामा रहाओ राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र सब पदार्थ सब फला सब गुना जिस माहे क्यों गोबिंद मनो बिसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे जीवी है पवजल पइए पार मेल साधु संग उदार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सावास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे से तीरत्या मिलिया निथामे थाओ रहाओ होर साध सब फिक्या तन मन फिका होए बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना यो संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंद सो मित्र सो हर नाम हृदय दे औगन सब मिटाए कै पर उपकार करे माल खजाना थ्यो थर हर के चन दहान नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाग गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुजन की ताते निस्पागो रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना हरक सोख ते रहे अतीता तीन जग तत् पछाना उस त निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा जन नानक यह खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधो रचना राम बनाई एक बिन से एक अस्थिर अस्थिर माने अचार्ज लख्यो ना जाई रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो जो सुपना रहनाई जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की छाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम शरणाई जा नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम शरणाई गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन आवे ऐन समगन रहे माया मैं कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह बिद आप बंदावे मृग त्रिशा जो झूठो एह जग देख तास उठतावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी

हाँ पयो तै बौरा एनिस औद कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरोरे नाहन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हार्यो गोविंद गत नहीं जानी निमुख ना लीन पयो चरणन स्यों बेथा औद सिरानी कह नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरभय पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डरे दीन दयाल सगल पै पंजन शरण तहे तुम पारे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम हिये मो तर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहु नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाओ गाए करुणा में पव सागर कै पार उतर रे रा गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी ग्वारेरी एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूरे हा बिखमार त्रिकुटी छुटी बिमल मजहार गुर की मत जिए आई कार इन विद राम मत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पे सुहा रंग माया नदर पई बिख ठाक रहाया उल्ट पही जीवत मर जागया शादर वे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पहो पा गया साद रहे बादंग हंकारा तित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दिष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लेव लाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हरनाए सिखिया दिखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्व गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माहे समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न पुलो न परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज समाना गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे सोब सो माने चतुराई नह चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तस्कर ले नन्ना कार न कोई करी राखे आप बड़ियाई देई नील अनिल अगन इकठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आखो कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन माने कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर ब्याप रहा निज ठाई उसत करे के ते मन प्रीत तन मह सूचे साच सोचीत नानक हर पजनीता नीत गौड़ी ग्वारेरी महला पहला ना मन मरे ना कारज होए मन बस दूता दुर्मत दोए मन मारे गुर ते इक होए

देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हमता के दास। गौड़ी महला पहला। ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पोछतानिया, जह प्रभ विसरे वाहिगुरु जी, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्व बुरा संसारे, जिस गुर मिले तिस गर्व निवारे। रहाओ बल राजा माया हंकारी, जगन करे बहु पार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चांद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हर नाखश दुराचारी, पर्व नारायण गर्भ प्रहारी, पहलाद उदारे कृपा धारी, भूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका शीश समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट महकासा, हर नाखश ले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अव्यासा, जरा सांद काल जमन संगारे, रक्त बीज काल ने बिदारे, दैत संगार संत निसारे, आपे सतगुर शाद विचारे, दूजे पाए दैत संगारे, गुरमत साच भक्त निस्तारे, बूढ़ा दुर्जोधन पत खोई, राम ना जाने करता सोई, जन को दुख पचे दुख होई, जन मेजे गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया, कांस केस चांडूर ना कोई, राम ना चिन्ह अपनी पत खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्व न मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए। गौड़ी महला पहला। चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, होड़ शिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला से सुखाली, एनस फूल।

पूरा गुर पेटे सो चगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हमे बंदर बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पे आल ना पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया। हम हर राखे गुरु शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा। काल ना छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख अपेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नाम पुले जम का दुख सहना। मैं तर नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम। साहस मरे संचे माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम। रैयत मेहर मुकदम सिकदारे, निहचल कोए ना दिसे संगारे। अफरयो काल कूड़ सिर मारे, निहचल एक सचा सच सोई। जिन कर साजी तिने सब गोई, ओ गुरमुख जापे ता पत होई। काजी सेख पेक फकीरा, बड़े कहावे होमे तन पीरा। काल ना छोड़े बिन सत गुर की धीरा, काल जाल जेवा अरनैनी। कानी काल सुने बिखन बैनी, बिन शब्दे मूठे दिन रैनी। हिरदे साच बसे हरनाए, काल ना जोहे सके गुण गाए। नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला। बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई। रहे अतीत सचे शरनाई, सच कर वैसे काल ना जो है। मन मुख को आवत जावत दुख मोह रहाओ। अपियो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर लिये। हर असमाते इहो सुकिये, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत बिरोले। सतगुरु देखिया दिखिया लीनी, मन तन अर्प्यो अंतर गत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परम हंस सच जोत अपार, जैन देखो तै एक अंकार। देह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरनी। मन ते मन माने आ चुकी अंग परमणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस तारिया, प्रभु पाए हम अव न पारिया। सहच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वस्या सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख हुई, नानक साच नाम मलक होई। गौड़ी महला पहला। राम नाम चित रापे जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका। राम न जपो पाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभु राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, तित कट अनहद बाजे तूरा। जो जन राम भक्त हर प्यार, से प्रभु राखे कृपा तार। दिन कै हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुखोई। सर्ब जिया में एको रवे, मन मुख हंकारी फिर जूनी पवे। सो बूझे जो सतगुर पाए, हमें मारे गुर शब्द पाए। अर्ध उर्ध की संध क्यों जाने, गुरमुख संध मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन तरिए। सोल है अष्टपदियां ग्वारेरी, गौड़ी किया गौड़ी बैरागन महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो गाई को गोयली। राखे कर सारा, अहनिस पाले राख ले आत्म सुख तारा। इत उत राखो दीन दयाला, तो शरनागत नदर निहाला। रहाओ जै देखो तह रव रहे, रख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पिया अद उर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सह ना अंधियारा। जग बिनसत हम देखिया, लोभे हंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई। बिन शब्द थिर को नहीं, बूझे सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या, फासे जम जाला। डोल बदा कस जेवरी, आकाश पताला। गुरमत नाम ना विसरे, सहजे पत पाइये। अंतर शब्द निदान है, मिल आप गवाइये। नदर करे प्रभ आपने, गुण अंक समावे। नानक मेल न चुके, लाहा सच पावे। गौड़ी महला पहला। गुर प्रसादी बूझले, तो होए निवेरा। कर कर नाम निरंजना सोठा।

जग या जग में एक है को आया जन्मत मोह मोहनी माया गर्भ कंठ में उर्ध तप करते सास सास से मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छड़ना देवन हार मनै बिसराना तारो कृपा जिसै गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आवन जाना ते मिटै नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत ग्रभ वासे मोह मगन मीठ जुन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने अपन मोह कटे कट दीने ए साजन कच को उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप पस अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहाँ कमात पौड़ी एकै आप करावन हारा आपे पाप पुन बिस्थारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओ आका अंत न जाने को जो जो करै सो फन हो एकै तेस गला बिस्थारा नानक आप सवारन हारा श्लोक राचर हे बिनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक ते शरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचो ते तै बंधन पाए जे बिद कतू ना छूटिया साकत ते उकमाए हाँ हाँ करते कर्म रत ताका फार अफार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एओ कर्म बिकार बादे जमकी जेवरी मिठी माया रंग प्रमते प्रम के मोहे नै बुझै जो प्रभ नाम सो तो एक करम बिकार बादे जमकी जेवरी मिठी माया रंग प्रम के मोहे नै बुझै सो प्रभ सदहु संग लेखै गंत न छूटिया काची काची पीत न सुध जिसै बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध श्लोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन आपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगाह कह ना सको आओ बैठ आदर सब देओ ओआ महली पवै तू बासा जन्म मरण होए बिनासा मस्तक कर्म लिख्यो तुर जाके हर संपै नानक करता कै श्लोक लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूढ़े अंध लाग प्रेदर गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रसराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया मैं जन्मै मरना ज्यो ज्यो हुक्म तिवै तो करना कौ ऊन ना कौ पुरा कौ सुगर ना कौ मूरा जित जित लावो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलपना श्लोक लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गैर गंभीर अथा दूसर नाही अवर को नानक बेपरवा पौड़ी लल्ला ताकै लवै न को एकै आप अवर न खो होवन हार होत सद आया ओआ का अंत न काहू पाया कीट हस्त मैं पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तै जपना श्लोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन धन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफलता हूं को गणिया जास रसन हर हर जस पनिया आए बसै साधु कै संगे अंदर नाम ते आवे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया बिदाता एकै आवन फिर जोड़ न आया नानक हर कै दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसै दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझै नानक नाम समाओ पौड़ी यया चारो दुरमत दो तिसै त्याग सुख सहजे सो यया जाए परो संत शरना जिस आसर या पव जल तरना यया जन्म न आवै सो एक नाम ले मने परो यया जन्म न हारिया गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाकै हीरै एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ईत ऊत के मीत गुरपुरै उपदेसिया नानक जपिया नीत पौड़ी अन दिन

ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਾਏ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸਨੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਆਪ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤ ਪੌੜੀ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮੈਂ ਸੇ ਖੱਟੈ ਜਿਨ ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹਿ ਚਲ ਏਕ ਸਰੇਵਿਆ ਹੋਰ ਸਭ ਵਿਨਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸ ਕੰਠ ਲਾਏ ਜਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਸ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮੀਂਹ ਬੁੱਠਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਿਆ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਰੱਜੀ ਤਿਪਤ ਅਘਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀਐ ਤੁਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਧੀਰੀਐ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦ ਕੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਭੁਲਾਏ ਆਪ ਤਿਸ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵਹੀ ਪੌੜੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲਾਗੇ ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਡਭਾਗੇ ਨਾਏ ਵਿਸਰਿਆ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣਾ ਟੁੱਟੇ ਕੱਚ ਧਾਗੇ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲੱਖ ਕੋਟ ਪਿਰਾਗੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੁੜਾਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉੱਠਾ ਸਾਬੇ ਕਾਜ ਸੋਹੇ ਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੋਹੇ ਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੈ ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇਲ ਬੇਠੀ ਆਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਐ ਸੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੋ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਵੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀ ਪਤ ਸਿਉਂ ਕਰ ਜਾਵੋ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੋ ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕ ਜੇ ਸਾਜਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਸੰਧੜੀ ਵੱਥ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੇਕਰ ਗਹਿ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧ ਨਾ ਛੋਡਾਂ ਮੂਲ ਹਰ ਛੋਡਨ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜ੍ਹੈ ਦੋਜਕ ਕੈਸੂਲ ਪੌੜੀ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਘਰ ਜਿਸ ਦੈ ਹਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲ ਧੋਵੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਸੰਕਟ ਸਭ ਖੋਵੈ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟੀਐ ਮਰ ਜਨਮ ਨਾ ਰੋਵੈ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਨਾਨਕ ਕਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੈ ਸਲੋਕ ਡੱਖਣਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੋਰੀ ਭਰਮ ਵਜਾਏ ਪਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਿਕ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੰਜੈ ਜਾਏ ਤਥਾਉਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੜਕੈ ਘੋੜੜੇ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੈ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ ਹੰਸਾਂ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਉਲਾਸੈ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਓਡਾਰੀ ਪੌੜੀ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੈ ਸੋ ਉਦਰੈ ਮਿੱਤਾ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੈ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿੱਤਾ 68 ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ ਸਭ ਪੁੰਨ ਤਿੰਨ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਦਰੇ ਵਿਖਿਆ ਗੜ ਜਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਲੜ ਲਾਏ ਉਧਾਰਿਅਨ ਦਿਓ ਸੇਵ ਅਮਿਤਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧੰਦੜੇ ਕੁਲਾਹਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਹੇਕੜੋ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਤਨ ਫੁਟਨ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈ ਵਿਸਰੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਕੀ ਤੋਨ ਦੇਵਤਾ ਤਿਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਸਭੇ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰਿਅਨ ਪ੍ਰਭ ਲਾਜ ਸਵਾਰੇ
सबे सिख उबारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है आप साज सवारे पौड़ी प्रभ बेअंत खिच अंत नाहे सब तिसह करना अगम अगोचर साहिबो जिया का परना हस्त दे प्रतपाल दा भरण पोखण करना मेहरबान बख्शिंद आप जप सच्चे तरना जो तुद भावै सो भला नानक दास शरणा सलोक महला पंजवां तिन्ना भुख ना का रही जिसदा प्रभ है सोए नानक चरणी लग्या उदरै सबो कोए महला पंजवां जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेश्वर जजवान तिसै भुख ना मूल पौड़ी मन रत्ता गोबिंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख न मोड़े ढाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े नानक मन तन चाओ ए नित प्रभ को लोड़े सुध कीचे राग गौड़ी भगतां की बाणी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद गौड़ी ग्वारेरी श्री कबीर जियो के चौप दे चौदा आब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारन कारण बन जाइय सो जल बिन भगवंत ना पाइय जय पावक सुर नर है जारे राम उदक जन जलत उबारे भाव सागर सुख सागर माही पीव रहे जल निकुटत नाही कह कबीर भज सारंग पानी राम उदक मेरी तिखा बुझानी गौड़ी कबीर जी माधो जल की प्यास न जाए जल मैं अगन उठी अधिकाए रहाओ तू जल निध हों जल का मीन जल मैं रहो जलै बिन खीन तू पिंजर हों सुवटा तोर जम मजार कहाँ करै मोर तू तरवर हों पंखी आहे मंद भागी तेरो दर्शन नाहे तू सत गुर हों नौतन चेला कह कबीर मिल अंत की बेला गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जान्या तब लोग काहे दुख मान्या हम अपत है अपनी पत कोई हमरे खोज परो मत कोई रहाओ हम मंदे मंदे मन माही सांझ पात काहू स्यो नाही पत अपत ताकि नहीं लाज जब तब जानोगे जब उग्र गोपाज कहो कबीर पत हर परवान सर्ब त्याग पाज केवल राम गौड़ी कबीर जी नंग नगन फिरत जो पाया जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बादे चाम जब नहीं चीनस आत्म राम रहाओ मून मंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति पेड़ न गैया खाई बिंद राख जो तरिया पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी संध्या प्रात इश्नान कराही जौ पै दादुर पानी माही जौ पै राम राम रत नाही ते सब धर्म राय कह जाही रहाओ काए रत बहु रूप रचाही काया रत बहु रूप रचाही तिनको दया सुपने पी नाही चार चरण कह बहु आगर साधु सुख पावें कल सागर कहो कबीर बहु काय करीजै सर्वस छोड़ महारस पीजै कबीर जी गौड़ी क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा जा कह हृदय भाओ है दूजा रे जन मन माधो स्यों लाइया चतुराई ना चतुर पुज पाइया रहाओ पर हर लोभ और लोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पात्र की कर ही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कोहरे पंडित बामन कब के होए बामन कह कह जन्म मत खोए रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूध कहो कबीर जो ब्रह्म बिचारे
कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। गौड़ी कबीर जी, अंधकार सुख कभे न सोई है, राजा रंक दो मेल रोई है। जो पै रसना राम न कहबो, उपजित बिनसित रोबत रहबो रहो। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौका की माया। जस जंती में जियो समाना, मुए मूर्ख को का कर जाना। हंसा सर्वर काल शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। गौड़ी कबीर जी, जोत की जात, जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। कवन सो कर जो निरपो कही है, पौ भज जाए अपै होए रही है रहाओ। तट तीर्थ नहीं मन पति आए, चार चार रहे उर जाए। पाप पुन दो एक समान, निज कर पारस तो जो गुण आन। कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस परचाए पर चरो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहें तहाँ ही रहाओ। कहन कहावन नह पतियई है, तो मन मन जाते हो मैं जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ है आहे। गौड़ी कबीर जी, उपजै निपजै निपज समाई, नैन देखत ए जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा रहाओ। अनेक जतन कर काया पाली, मरती बार अग्न संग जाली। चुआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी, अवर मुए क्या सो करीजै, तो कीजै जो आपन जीजै। मैं न मरो मरबो संसारा, आप मोहे मिलो है जिया बनहारा रहाओ। या देही परमल मैं कंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज भरै मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कभू राजा शत्रपत कभू पेखारी। साकत मरै संत सब जीवै, राम रसायन रसना पीवै। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोलै बिरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गधा चरै, नित उठासै ही गै मरै। माता पैसा अमोहा जाए, कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, लेले को चुंगै नित भेड। राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुर सो जी पाई। गौड़ी कबीर जी, पंच पदे। ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूर्व जन्म हो तप काहीना। अब कहो राम कवन गत मोरी, तजीले बनारस मत पई थोरी रहो। सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मग हर उठ आया। बहुत बरस तप काशी किया, बहुत बरस तप किया काशी। मरन पया मगहर की बासी, काशी मगहर संबिचारी। ओछी भगत कैसे उतर सपारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने। मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी, चुआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जलै काठ कै संगा। इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन पर उरवार न जाई रहाओ। रात जे सोवै दिन करै काम, एक खिन लेह ना हर को नाम। हाथ तन डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बाध्यो चोर।
गुरमत रास रास हर गुण गावे, राम राम रमत सुख पावे, कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बास सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब धंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उल्ट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट पए है मीता, साकत उल्ट सो जन पए चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मान्या, शांत पई जब गोविंद जान्या, रहाओ तन में होती कोट उपाद, उल्ट पई सुख सहज समाध, आप पछाने आपे आप, रोग ना व्यापे तीनों ताप, अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जान्या जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख सहज समावो, आप ना डरो ना अवर डरावो। गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जियो कह कर जाता, शब्द अतीत अनाहद राता, जिन राम जान्या तिने पछान्या, ज्यो गुंगे साकर मन मान्या, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बोहर न करना, सो पद रवो जे बोहर न रवना, सो ध्यान धरो जे बोहर न धरना, ऐसे मरो जे बोहर न मरना, उल्टी गंगा जमन में उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर एह ब्योहारा, तात विचार क्या अवर बिचारा, आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा, कह कबीर निरंजन त्यावो, तित कर जाओ जे बोहर ना आवो। गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यों पाया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अब मोहे राम अपना कर जान्या, सहज सपाई मेरा मन मान्या, रहाओ ब्रह्मे कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे घर आया, कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जय मरना सब जगत त्रासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया, अब कैसे मरो मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम न जान्या, रहाओ मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई, कहो कबीर मन पया आनंदा, गया परम रहया परमानंदा। गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावो, खोजत तन में ठौर न पावो, लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर, रहाओ एक पाए देखो सब नारी, क्या जानो शह कौन प्यारी, कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पाई, मुक्त अनंत पुकारण जाई, अब कोह राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन ने होरा, रहाओ तीन लोक जाके है पार, सो काहे ना करे प्रतपार, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार, प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह, जब लग रस तब लग नहीं नेह, रहाओ साहन सत करे जी अपने, सोर मैया को मिले न सुपने, तन मन धन ग्रह सौंप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। गौड़ी कबीर जी बिख्या व्यापिया सगो संसार, बिख्या लै डूबी परवार, रे नर नाव चौड़ कत बोड़ी, हर स्यों तोड़ बिख्या संग जोड़ी, रहाओ सुर नर दादे लागी आग, निकट नीर पस पीवस ना चाग, चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथित कबीर। गौड़ी कबीर जी जह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना पई महतारी, जह नर राम भगत नह साधी, जन्मत कस ना मुओ अपराधी, रहाओ मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मझिया,
कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप नाम बिना जैसे कुबज कुरूप गौड़ी कबीर जी जो जान ले खसम का नाव तिनकै साध बलिहार जाऊं सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो भाई मेरा मन पावे रहाओ जय घट राम रहया भरपूर तिनकी पग पंकज हम तूर जात जुलाहा मत का तीर सहज सहज गुण रमै कबीर गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चुए मेरी पाठी सांच महारस तन पया काठी वाको कही है सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ सहज कलालन जो मिल आई आनंद माते अनदिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अनपो पाया गौड़ी कबीर जी मन का सुभाओ मने व्यापी मने मार कवन सिद्ध थापी कवन सो मन जो मन मारे मन को मार कहो किस तार रहाओ मन अंतर बोला सब कोई मन मारे बिन भगत ना होई कहो कबीर जो जाने पेओ मन मद सूदन त्रिभुवन देओ कहो कबीर जो जाने पेओ मन मद सूदन त्रिभुवन देओ गौड़ी कबीर जी ओए जदी सै अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे कोहरे पंडित अंबर का स्यों लागा बूझै बूझन हार सुभागा रहाओ सूरज चांद करै उजियारा सब मैं पसरिया ब्रह्म पसारा कहो कबीर जानेगा सोए हृदय राम मुख रामै होए गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई सांकल जेवरी लह आई आपन नगर आप ते बांध्या मोह कै फाद काल सर सांध्या रहाओ कटी ना कटै टूट न जाई सास आपन होए जग को खाई हम देखत जिन सब जग लूटिया कहो कबीर मैं राम कह छुटिया गौड़ी कबीर।

पाछे ते जम क्यों ना पठावो गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना जारे खसम ता राखे कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहया समाए रहाओ काको जरै काहे होय हान नट वट खेले सारिंग पान कहो कबीर अखर दोय पाख होएगा खसम तां लेगा राख गौड़ी कबीर जी दुप दे नामै जोग ध्यान चित लाया बिन बैराग ना छूट समाया कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम आधारा कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम आधारा रहाओ कहो कबीर खोजो असमान राम समान न देखो आन गौड़ी कबीर जी जह सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवारै काग इस तन धन को क्या गुरबैया राम नाम काहे ना दृढ़िया रहाओ कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे गौड़ी ग्वारेरी के पदे पैंतीस राग गौड़ी ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आग्या आवै सो सुख हमो न मांग्या पावै बिख्या अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हमो साच कर जाना सनकादिक नारद मुन शेखा तिन पी तन में मन नहीं पेखा इस मन को कोई खोजो पाई तन छूटे मन कहाँ समाई गुर प्रसादी जय दियो नामा भगत कै प्रेम इन्हीं है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका भरम गया तिन साच पछाना इस मन को रूप ना रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई इस मन का कोई जाने पेयो ए मन लीन पे सुख देयो जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रब रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी एहनस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कलिप तर तारे जो हर हरे सो होहे न आने जो हर हरे सो होहे न आने कह कबीर राम नाम पछाने जो हर हरे सो होहे न आना

जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पार कर जात न सोही सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कबला चरण शरण है जाके कह जन का नाही करता के सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर न होई कौन को पूत पिता को काको कौन मरे को दे संतापो हर ठग जग कोठ गौरी लाई हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई रहाओ कौन को पुरख कौन की नारी या तत लेह शरीर बिचारी कह कबीर ठग स्यों मन मान्या गई ठगोरी ठग पहचान्या अब मोको पे राजा राम सहाई जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ साधु संगत दियो रलाए पांच दूत ले लियो छुड़ाए पांच दूत ते लियो छुड़ाए अमृत नाम जपो जप रसना अमोल दास कर लीनो अपना सतगुर कीनो पर उपकार काड लीन सागर संसार चरण कमल स्यों लागी प्रीत गोविंद बसै नित्ता नित चीत माया तपित बुझिया अंग्यार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभु स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलया मेरे पाई जिस कृपा करे तिस पूरन साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज जल है सूतक थल है सूतक सूतक ओपत होई जन्म

फुन सूतक सूतक परज बिगोई कोहरे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक सूतक श्रवणी होई उठत बैठत सूतक लागै सूतक परै रसोई फासन की बिद सब को जाने छूटन की एक कोई कह कबीर राम हृदय बिचारे सूतक तिने न होई गौड़ी झगड़ा एक नबेरो राम जो तुम अपने जन सो काम रहाओ ए मन बड़ा के जा सो मन लमान्या ए मन बड़ा के जा सो मन मान्या राम बड़ा कह राम मैं जान्या ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया वेद बड़ा के जहां ते आया कह कबीर हो पया उदास तीर्थ बड़ा के हर का दास राग गौड़ी चेती देखो भाई ज्ञान की आई आंधी सब उडानी भ्रम की टाटी रह न माया बांधी रहाओ जो चित्ते की दोए थून गिरानी मोह बलेडा टूटा तृष्णा तिस्ना शान परी तर ऊपर दुर्मत पांडा फूटा आंधी पाछा जो जल बरखा तह तेरा जन पीना कह कबीर मन पया प्रगासा उदय पान जब जीना गौड़ी चेती एक ओहंकार सत गुर प्रसाद हर जस सुने ना हर गुण गावे बातन ही हर जस सुने ना हर गुण गावे बातन ही असमान गिरावे ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगते बाहज तिनते सदा डराने रही है रहाओ आप न देह चुरू पर पानी तह निंदा जह गंगा आनी बैठत उठत कुटिलता चाल आप गए और नहूं कल छाड़ कुचर्चा आन न जाने ब्रह्मा हु को कहो न माने आप गए और नहूं खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे अवरन हस्त आप हैं काने तिनको देख कबीर ल जाने राग गौड़ी बैरागन कबीर जी एक ओंकार सत गुर प्रसाद जीवत पितर ना माने को मुए सराध कराही पितर पि बपरे को क्यों पावे कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जाग बिनसे कुशल पि कैसे होई रहाओ माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे कहिए अपन कया न लेही सर जियो कट है निर्जियो पूजा अंत काल को पारी राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी देवी देवा पूजन डोलें पार ब्रह्म नहीं जाना कहत कबीर अकुल नहीं चेत्या बिख्या स्यों लपटाना गौड़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै ऐसे सुन समाया अंजन माहे निरंजन रहिया बोहड़ न पव जल पाया मेरे राम ऐसा खीर बलोया गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन बिद अमृत पियोया रहाओ गुर कै बाण बज्र कल शेदी प्रगटिया पद बरगासा सकत अंधेर जे बड़ी भ्रम चूका नह चल शिव कर वासा तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है एह जग वेद्या पाई दैदस बूढ़ी पवन चुलावै डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुरमत भागी कहो कबीर अनपो इक देख्या राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागण तिप दे उल्टत पवन चक्कर खट भेदे सुरत सुन अनरागी आवै न जाए मरे न जीवै तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरै नातर था बेगाना रहाओ निवरै दूर दूर फुन निवरै जिन जैसा कर जान्या अलौती का जस भया बरेडा जिन पिया तिन जान्या तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है ऐसा कोय बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चाल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं शहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मेरत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै न जाए ना मुकाती हल्की लगे ना भारी रहाओ अर्ध उर्द दो तै नाही रात दिन सतै नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही
अगाम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लिया कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सतसंगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे पवन पूंजी परगास्यो तृष्णा गुण परी कट पीतर इन विद टांड बिसाहे ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार की ओ बंजारा रहाओ काम क्रोध दोए पे जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान नबेर टांडा उतरियो पारा कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई काटी चढ़त बैल एक थाका चलो गोन छटकाई। गौड़ी पंच पदम पेवकड़े दिन चार है साहुरड़े जाना अंधा लोक न जानी मूर्ख याना कहो डडिया बांध है धन खड़ी पाहु कर आए मुकलाऊ आए रहाओ ओह जे दिसै खुहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनिहारी साहिब होए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागण जानिए गुर शब्द बिचारे किरत की बांधी सब फिरै देखो बिचारी एस नो क्या आखिया क्या करे बेचारी पई निरासी उठ चली चित बंद न तीरा हर की चरणी लाग रो पाज शरण कबीरा। गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा अवर न दूजा पाई रुंडत मुंडत एक शब्दी ए कह है सिद्ध पाई रुंडत मुंडत एक शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन परम पुलाने अंदा जापे जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु फंदा रहाओ जाते उपजी तही समानी ए बिद बिसरी तब ही पंडित गुणी सूर हम दाते एह कह है बड़ हम ही जिसे बुझाए सोई बुझे बिन बुझे क्यों रही है सतगुर मिले अंधेरा चुके इन बिद मानक लही है ताज बावे दाने बेकारा हार पाद दृढ़ कर रही है कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहा किछ नाही पंच तत् तै नाही इड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहाँ समाई ए संसार मोको अनदिन व्यापै मोको को न कह समझाई रहाओ जय बर पांड पिंड तह नाही रचनहार तै नाही जोड़न हारो सदा अतीता एक ही है किस माही

ओही पर जानै, ओ तो सदा अविनाशी गौड़ी। सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा, सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प विवर्जित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मर्त न सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा तारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे होए पसारी। मान पवन दोए तुम्बा, मान पवन दोए तुम्बा करी है, जोग जोग सारद साजी। थिर पई तांती टूट सुनाही, अनहद किंगुरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोल न लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी गौड़ी। गाज नव गाज दस गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिखाई। गई बनावन माहो, घर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी न मिनिय तोल न तुलिय, पाचन सेर अठाई। जौ कर पाचन बेग न पावे, झगर करै कर हाई। दिन की बैठ खसम की बरकस, ए बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया, चलो जुला हो रिसाई। छोची नली तांत नहीं निकसै, नतर रही उरझाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी, कहो कबीर समझाई गौड़ी। एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए। जित घट नाम न उपजै, फूट मरै जन सोए। सांवल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिला सिद्ध पाइय, के एह जोग के भोग। दो मिल कारज उपजै, राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है, एह तो ब्रह्म विचार। ज्यो काशी उपदेश होए, मानस मरती बार। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए गौड़ी। जेते जतन करत ते डूबे, भाव सागर नहीं तारियो रे। कर्म धर्म करते बहु संजम, अहं बोध मन जारियो रे। सास ग्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनो बिसार्यो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है, कौडी बदले हार्यो रे रहाओ। तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहि बिचार्यो रे। उन्मत मान हिर्यो मन माही, गुर का शब्द ना तार्यो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लैत बिकार्यो रे। कर्म पाग संतन संगाने, काष्ट लोह उधार्यो रे। तावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हार्यो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तार्यो रे गौड़ी। काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश। काम स्वाए गज बस परे, मन बौरा रे, अंकस सहयो शीश। बिखै बाच हर राच समझ, मन बौरा रे। निरपै होए ना हर भजे, निरपै होए ना हर भजे, मन बौरा रे। गयो ना राम जहाज रहाओ, मरकट मुष्टि अनाज की, मन बौरा रे। लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा भरिया, मन बौरा रे। नाच्यो कार कार बार, ज्यो नलनी सूटा गहयो, मन बौरा रे। माया एहो व्यवहार, जैसा रंग कुसुंब का, मन

0: मन बौरारे छूटन हर की सेव गौड़ी। अगन ना दह पवन नहीं मगन है तस्कर नेर ना आवे राम नाम तन खर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधो गोविंद तरनी तर है सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ। इस तन कारण शिवसन कादिक खोजत पे उदासी मन मुकंद जह बा नारायण पर न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ पागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख विचारी तुम कर लाख कोट अस्वहस्ती हम कर एक मुरारी। गौड़ी
1: कप के कर मुष्ट चनन की लुब्ध ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच सियो ते फिर गरह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो राव। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किने ना कराउ लयो तैसे प्रमत अनेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोपन अर सुत दारा।

मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कछ आहे न मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी में पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हों लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी खिन में बिनस जाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जां तिस भावै ता हुकुम मनावै इस बेड़े को पार लंघावै गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी कहो कबीर भज सारंग पानी और वार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जाओ जग में आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अग्न में रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठाउर ना ठायो कहो कबीर पज सारंग पानी आवत दीसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी

पाइय परम निदान रहम। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए भाव भगत भगवान। संपै देख न हरखी है बिपत देख न रोए ज्यों संपै त्यों बिपत है बिद ने रचया सो हुए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जे कट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंचले जिन पार बिरख बसेरो पंख को तैसोए संसार। राम रस पिया रे जे रस विसर गए रस और रहाओ और मुए क्या रोइया जब आपा थिर न रहाए। जो उपजै सो बिनसै दुख कर रोवै बलाए जह की उपजी तहरची पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चित या राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ ने हारे कमनी लोचन भरी ले उसासा उरना भीजै पग ना खिसै हर दर्शन की आसा उडहो ना कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करीजै एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय। राग गौड़ी ग्यारह आस पास कंतुर सीका

रहाओ, बिंद्रावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही सारंग धर, मोहे कबीरा नाऊ रे। गौड़ी पूर्वी बारवा, बिपुल वस्त्र केते हैं पहरे, क्या बन मदे बासा, कहाँ पया नर देवा तोखे, क्या जल बोर्यो ज्ञाता, जीरे जाहेगा मैं जाना, अवगत समझ या नाम, जत जत देखो बहुर ना पेखो, संग माया लपटाना रहाओ, ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी, एव जग सगलो धंधा, कह कबीर एक राम नाम बिन, या जग माया अंधा। गौड़ी बारम मन रे छाडो परम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सन्मुख रणते डरप, सती के सांचे भांडे, डगमग छाड रे मन बौरा, अब तौ जरे मरे सिद्ध पाइय, लीनो हाथ संदौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या विद जगत बिगुता, कह कबीर राजा राम ना छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा, गौड़ी ते राम फरमान तेरा सिरै ऊपर, फिर ना करत विचार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तियार, साहिब रोस धरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का जी आए भावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं, प्रमत नंद बहु ठाकोरे, भगत हेत अवतार लियो है, भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सुनंदन का कोरे, तरण आकाश दसो दिस नाही, तब एव नंद कहाँ थोरे, रहाओ संकट नहीं परे, जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे। गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, रहाओ निंदा होए ता बैकुंठ जाइया, नाम पदार्थ मने बसाइया, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक धोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उदार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार, राजा राम तू ऐसा निरभाव, तरण तारण राम राया रहाओ, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब तो अब हम तुम एक पए हैं, एक देखत मन पतिया ही, जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल न खटाई, कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुल्फ प्राण कर रखे, करते बार न लाई, अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसै घर जाई रहाओ, पंच पहरुआ धर्म रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास उजारा, नौ घर देख जो कामन भूली, बस्त अनूप न पाई, कहत कबीर नवै घर मूसे, दसवें तत् सुनाई। गौड़ी माई मोहे अवर न जान्यो आनाना, शिवशन काद जास गुण गावे, तास बसै मोरो तास बसै मोरे प्राणाना रहाओ, हृदय प्रगास ज्ञान गुरु गम्मत, गगन मंडल में ध्यान नाना, बिखै रोग पै बंधन भागे, मन निज घर सुख जान नाना, एक सुमत रत जान मान, प्रभ दूसर मन न आनाना, चंदन बास पय मन बासन त्याग, घट्यो अभिमाना, जो जन गाए त्याय जस ठाकुर, तास प्रभु है थाना ना, ते बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथा नाना, काट शक्त शिव सहज प्रगासियो, एक समाना ना, कह कबीर गुर भेट महासुख, प्रमत रहे मन माना। राग गौड़ी पूर्वी बावन अखरी, कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पर गुर प्रसाद, बावन अक्षर लोक त्रय, सब कछ इन्हीं माहे, ए अखर खिर जाहेंगे, ओए अखर इन मै नाहे, जहां बोल तय अक्षर आवा, जह अबोल तय मन न रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख ना कोई,
अलह लहो तो क्या कहो, कहो तको उपकार, बटक बीज मैं रब रहे जाको तीन लोक विस्थार। अलह लहंता भेद शय कछ, कछ पायो भेद, उल्ट भेद मन भेद्यो पायो अभंग अछेद। तुर्क तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कछुअक पढ़िए ज्ञान। ओंकार आदि मैं जाना, लिख अर मिट ताहे ना माना। ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कका किरण कमल मैं पावा, सस बिगास संपट नहीं आवा। अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां काह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे दिस्तावा। खसमे जान खिमा कर रह, तव होए निखियो अखय पद लह। गगा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरई काना। रहे बिहंगम कतै न जाई, अगह गह गह गगन रहाई। गगा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबै न होई। ता घट माहे काट, जाओ पावा सो घट छो, सो घट छाड़। अब घट कत तावा, गंगा निग्रह सुनने कर। निर्वारो संदेह नाही देख न पाजी है, परम सियानप ए चचा रचत चित्र है पारी। तज चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा। तज चित्र चितराख चितेरा, छछा एह छत्रपत। पासा छक के ना रहो, छाड़ के ना आसा। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत आ बंधावा। जजा जौ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै। आस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह। झज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो झजक नाही परवाना। कत चख चख औरन समझावा, झगर किए झगर ही पावा। गंगा निकट जो घट रहो, दूर कहाँ तज जाए। जा कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। टट्टा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही। देख अटल टल कतै न जावा, रह लपट कट पर चौं पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मैं डर रहया समाई। जो डर डरै ता फिर डर लागै, निडर हुआ डर और होए भागै। टड्डा ढिग ढूंढै कत आना, ढूंढत ही ढह गए पराना। चढ़ सुमेर ढूंढ जब आवा, जे गढ़ गढ़ियो सो गढ़ मैं पावा। अनाणा रण रूतो नर नहीं करै, ना निवै ना फुन संचरै। धन जन्म ताही को गणै, मारै एक तज जाए घणै। तत्ता अतर तरयो न जाई, तन त्रि भवन मन मह रहयो समाई। जौ त्रि भवन तन मह सुमावा, तौ तत्तै तत् मिलया सच पावा। तथा अथा था नहीं पावा, ओ अथा ए थिर न रहावा। थोड़ै थाल थानक आरंभै, बिन ही थांबै मंदर थंबै। दद्दा देख जो बिन सुनहारा, जस अदेख तस राज राख बिचारा। दसवें द्वार कुंची जब दीजै, तौ दयाल को दर्शन की जय। तद्दा अर्दै उर्द नवेरा, अर्दै उर्दै मंज बसेरा। अर्दै छाड़ उर्द जब आवा, तौ अर्दै उर्द मिलया सुख पावा। नन्ना निस्दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरखा निरख मिलावा। पप्पा अपर पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यों पर चो लावा। पांचों इंद्री निग्रह करी, पापन दो निर्वरई। फफा फिन भूल फफा बिन फूल फल होई, ता फल फंक लख जाओ कोई। दून न परी फंक बेचारै, ता फल फंक सबै तन फारै। बब्बा बिंद बिंद मिलावा, बिंद बिंद न बिछरन पावा। बंदो होए बंदगी गह, बंदक होए बंद सुध लह। पब्बा भेद भेद मिलावा, अब पाओ भान परो संवावा। जो बाहर सो भीतर जान्या, पया भेद भूपत पहचान्या। ममा मूल गहया मन मानै, मरमी होए सो मन को जानै। मत कोई मन मिलता बिलमावै, मगन भया ते सो सच पावै। ममा मन स्यों काज है, मन सादे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलया ना कोए।
ਇਹੋ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਓ ਮਨ ਸੁਈਓ ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ ਇਹੋ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹਿ ਤਉ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ ਈਆ ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਉ ਦੁਰਮਤ ਹਨ ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਾਓ ਰਣ ਰੂਤੋ ਭਾਜੈ ਨਹੀਂ ਸੂਰਉ ਥਾਰੋ ਨਾਉ ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏ ਨਿਰਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੈ ਅੰਤ ਨ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸਚ ਪਾਵੈ ਅਰ ਜੋ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਤਉ ਅਲਹ ਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ ਬਾਬਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸੰਹਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸੰਹਾਰ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ ਬਲ ਬਲ ਜੇ ਬਿਨ ਸੰਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੈ ਬਲ ਬਲ ਜੇ ਵਿਸ਼ਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੈ ਵਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸਚ ਪਾਵੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਜਾਨੀਐ ਵਾਹ ਜਾਣੈ ਇਹ ਹੋਏ ਇਹ ਅਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲੈ ਤਬ ਮਿਲ ਤਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਸੱਸਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰ ਸੋਧੋ ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿਰੋਧੋ ਘਟ ਪਰਚੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਾਉ ਖੱਖਾ ਖੋਜ ਪਰੈ ਜੋ ਕੋਈ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਈ ਖੋਜ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤੋ ਭਵਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਵੈ ਬਾਰਾ ਸੱਸਾ ਸੋ ਸਹਿ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇ ਨਿਵਾਰੈ ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰੀ ਓ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ ਹਾ ਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ ਜਬ ਹੀ ਹੋਏ ਤਬੈ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜੋ ਕੋਈ ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਇਹ ਨ ਹੋਈ ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ ਲਖਮੀ ਬਰ ਸਿਉ ਜੋ ਲਿਉ ਲਾਵੈ ਸੋਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਖੱਖਾ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਅਜ ਹੂੰ ਨੈ ਚੇਤੇ ਅਬ ਜਗ ਜਾਨ ਜੋ ਮਨਾ ਰਹੈ ਜੈ ਕਾ ਵਿਛਰਾ ਜੈ ਕਾ ਵਿਛਰਾ ਤੈ ਥਿਰ ਲਹੈ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨ ਸਕਿਆ ਨਾ ਇਖਰ ਏਕ ਪਛਾਨ ਸਤ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰਾ ਕਹੈ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਸੋ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ਪੰਡਿਤ ਲੋਗੈ ਕਉ ਵਿਵਹਾਰ ਗਿਆਨਵੰਤ ਕਉ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕਹਿ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੁਧ ਹੋਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈ ਗਾ ਸੋਈ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਥਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸਲੋਕ ਪੰਦਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਲਖੈ ਜੋ ਭੇਉ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ਥਿੱਤੀ ਅਮਾਵਸ ਮੈਂ ਆਸ ਨਿਵਾਰੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸਮਾਰੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੋ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਅਨਭਉ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਨਿਜ ਸਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ ਰਹਾਉ ਪਰ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਮੈਂ ਖੇਲੈ ਅਘਟ ਅਪਾਰ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਦੁਤੀਆ ਦਹੁ ਕਰ ਜਾਨੈ ਅੰਗ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਰ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੈ ਨਾ ਘਟਤਾ ਜਾਏ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕੈ ਪਾਏ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੈ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਚੌਥਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕੋ ਗਹੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਕਬੋ ਨ ਬਹੋ ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪੈ ਆਪ ਆਪੈ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਪਾਂਚੈ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਜੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸ ਪੀਵੈ ਕੋਏ ਜਰਾ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਏ ਛੱਠ ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਛਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਏ ਬਿਨ ਪਰਚੈ ਨਹੀਂ ਥਿਰਾ ਰਹਾਏ ਦੁਬਦਾ ਮੇਟ ਖਿਮਾ ਗੈ ਰਹੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨਾ ਸਹੋ ਸਾਤੈ ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪਰਵਾਣ ਛੂਟੈ ਸੰਸਾ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਦੁੱਖ ਸੁਨ ਸਰੋਵਰ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਦਰਾਇਆ ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੈ ਭੇਦ ਉਲਟਾ ਰਹਿ ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ ਨੌਮੀ ਨਵੈਂ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਧ ਬਹਿਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖੋ ਬਾਂਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਓ ਦਸਵੀਂ ਦਹਿ ਦਿਸ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਛੂਟੈ ਭਰਮ ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ ਅਮਲ ਨਾ ਮਲ ਨਾ ਛਾ ਨਹੀਂ ਧੂਪ ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ਤਉ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ ਦੂਰ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ ਬਾਰਸ ਬਾਰੈ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਐਨਿਸ ਬਾਜੇ ਅਨ ਹਦ ਤੂਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇਹੂੰ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਓ ਅਚਰਜ ਪਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸਿਉ
तेरस तेरा अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मैं बसै मुरार सतसंतो का तरो त्यान कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान पुण्य पूरा चंद आकाश पसरै कला सहज प्रगास आद अंत मद होय रहया थीर सुख सागर मैं रमै कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुर गम भेद सो हर का पावो रहाव आदित करे भगत आरंभ काया मंदिर मनसा थंब अहनिस अखंड सुर ही जाए तव अनहद बेण सहज मैं बाय सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेग सगल बेख हरै बाणी बाणी रोक्या रह द्वार बाणी रोक्या रह द्वार तो मन मत वारो पीवना।

राय बुध वार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुर मिल दऊ एक समतर उर्द पंक लै सूदा करै बृहस्पत बिख्या देव हाय तीन देव एक संग लाए तीन नदी त्रै तीन नदी तै त्रिकटी माहे एनस कसमल तो वह नाहे सुकृत सहारे सो ए व्रत चढ़ै अनदिन आप आप स्यों लड़ै।

घट मैं जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नाश जब ला घट मैं दूजी आन तव लो महल न लाभ जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारी ले राम कहत जन का सुना तरे रहा तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजामल तारी ले चरण बदक जन ते मुक्त भय हों बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन को राज दिए जप हीन तप हीन कोल हीन क्रम हीन नामे के स्वामी ते उतरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारे री एक ओंकार सतनाम करता पुर गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुपांती राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बसारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करहो सुभाई चरण न छाडो शरीर कल जाई कहो रविदास परम तेरी साबा बेग मिलो जन करना बेलांबा बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं ते ठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जिवाल आव मोहे खूब वतन गह पाई वहां खैर सदा मेरे पाई रहाओ कायम दायम सदा पातशाही दोम न सेम एक सो आई आबादान सदा मशहूर उहां गनी बसै मामूर त्यों त्यों सैल करै ज्यों पावै महरम महल ना को अटकावै कह रविदास खलास चमारा जो हम शहरी सो अमीत हमारा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बैरागण रविदास जियो घट अब घट डूंगर खणा एक निर्गुण बैल हमार रमिये स्यों एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार कोबन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे रहाओ हम बन जारो राम को सहज करो ब्याव पार मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार उर्वार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल मोह जम डंडन लाग गई तजी ले सर्व जंजाल जैसा रंग कुसुम का तैसा ओ संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चुमार गौड़ी पूर्वी रविदास जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद कू भरयो जैसे दादरा कछ देश विदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बेखिया बे मोहया कछ आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी रहाओ मरण पही मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए करो कृपा भ्रम चुकई मैं सुमत देहो समझाए जोगी सरपावे नहीं तौ गुण कथन अपार प्रेम भगत कै कारण है कहो रविदास चमार गौड़ी बैरागण एक ओंकार सतगुर प्रसाद सत जुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार पार कैसे पाए बोरे मोसो को ना कह समझाए जाते आवा गवन बिलाए रहाओ बहुविद धर्म निरूपी है करता दिस सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जे सादे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान बाहर उदक पखारी है घट पीतर बिभेद विकार शुद्ध कवन पर होए बो सुच कुंचर वेद व्यवहार रव प्रगास रजनी जथा गत जानत सब संसार पार समानो तांबो छोए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत ललाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी परम बंधन काट विकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार अनक जतन निग्रह किए टारी न टरे परम फास प्रेम भगत नहीं उपजै ताते रविदास उदास एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त जुनी साहब भंग गुर प्रसाद राग आसा मल्ला पहला कर पहला सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बै सर्व समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते राग परिश्यो कहिया केते तेरे गावन हारे गावन तदनो पवन पाणी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तदनो सिद्ध समाधि इंद्र गावन तदनो साध विचारे गावन तदनो जति सती संतोखी गावन तदनो वीर करारे
गावन तदनो पंडित पढ़े रखीशर, जुग जुग बेदा नाले, गावन तदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग मच पै आले, गावन तदनो रतन उपाय तेरे, जेते अठसठ तीरथ नाले, गावन तदनो जोध महाबल सूरा, गावन तदनो खाणी चारे, गावन तदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, सही तदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पी हो सी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर देखा कीता अपना, ज्यों तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावे सोई कर सी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पातशाह शाहपत साहेब नानक रह नरजाई, आसा मल्ला चौथा, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमा पारा, सब त्यावै सब त्यावै तुत जी, हर सच्चे सृजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया कादा तारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा, जो सेवै तुत जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्यावै तुत जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त भय जिन हर त्याया जियो, तिन तुटी जमकी फासी, जिन नर भौ जिन हर नर भौ त्याया जियो, तिन का भौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेवै मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुत जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुत जेवड अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू न चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरता जी, तू आपे करें सो होई, तुद आपे सृज सब उपाई जी, तुद आपे सृज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जन होई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला, चौप दे कर दूजा, सुन वड्डा आखे सब कोई, के बड़ वड्डा डीठा होई, कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहेबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा किता, केवड़ चीरा रहाओ, सब सुरते मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगी आईया, सिद्धा पुरखा किया बड़े आईया, तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया, करम मिले ना ही ठाकर हाईया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिस क्या चारा, नानक सच सवार नहारा, समला पहला, आखा जीवा विसरा मर जाऊं, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लाग भूख, तित भूख है खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहेब साचा नाए रहाओ, साचे नाम की तिल बुड़े आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखण पाए, बड़ा न होवे घाट न जाए, ना उमर न होवे सोग, देंदा रह न चुके भोग, गुण ए होर नाही कोय, ना को होवा ना को होए, जे बड़े आप ते बड़ तेरी दात, जिन दिन करका कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नावै बाज सनात, आसा मुल्ला पहला, जे दर मांगत को करे, महली खसम सुने, भावै तीरक भावै तके, एक वडाई दे, जानो जोत न पूछो, जाति आगे जात न हे रहाओ, आप कराए आप करे, आप उलामे चित तरे, जा तू करण हार करतार, क्या मोहता जी क्या संसार, आप उपाय आपे दे, आपे दुरमत मन करे, गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अनेरा विचों जाए, साच प्यारा आप करे, अवरी को साच ना दे, जे किसै दे बखाणा, नानक आगे पूछ ना ले, आसम अल्लाह पहला, ताल मदीरे कटके काट, दोलक दुनिया वाजे वाज, नारद नाचे कल का पाओ, जति सती कह राखे पाओ, नानक ना विटों कुर्बान, अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ, गुरु पासों फिर चेला खाए।
ताम प्रीत वसै घर आए। जे सौ वरिया जीवन खान खसम पछाणे सो दिन परवान। दर्शन देख्या दया न होए लय दिते बिन रह न कोए। राजा न्याओ करे हथ होए कह खुदाए न माने कोए। मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान। गुरु प्रसाद जाने मेहमान तां किस दर गै पावे मान। आसा मल्ला पहला जेता शब्द सुरत तुन तेती।

पीपा खंडी माया अदक लगै रहा। फूल माला गल पहरूंगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करूंगी श्रृंगारो। पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो। पंच सखी मिल रुदन करे हा, शाप जूता प्रणोत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आशा कर सेवा महला पहला। मन मोती जे गहना होवै पौन होवै, सूत धारी खिमा शिंगार कामन तन पहरै रावै। लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन, मोही तेरे गुण होहे न अबरी रहाओ। हर हर हर हर हर हर कंठ ले पहरै, दामोदर दंत लई कर कर करता कंगन पहरै। इन बिद चित तरी मत सूदन कर मुंदरी पहरै, परमेश्वर पट लई तीरज धड़ी बंदावै। कामन श्री रंग सुरमा देई, मन मंदिर जे दीपक जाले काया सेज करी। ज्ञान राव जब सेज आवै, ता नानक भोग करी। असमला पहला कीता होवै करे कराया, तिस क्या कहियै भाई। जो किछ करना सो कर रहा, कीते क्या चतराई। तेरा हुक्म पला तुद भावै, नानक ता को मिलै बड़ाई। साचे नाम समावै रहाओ, किरत पया परवाना लिखिया। बाउड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया। मेट न सकै कोई, जे को दरगै बहुता बोलै। नाउ पवै बाजारी, सतरंज बाजी पक्कै नाही। कच्ची आवै सारी, ना को पढ़िया पंडित बिना। ना को मूर्ख मंदा, बंदी अंदर सिफत कराए। ता कहो कहियै बंदा, समला पहला गुर का शब्द मन है। मैं मुंद्रा खिंता खिमा हंडावो, जो कुछ करे भला कर मानो। सहज जोग निद पावो, बाबा जुगता जियो जुगै जुग जोगी। परम तंत मैं जोगं, अमृत नाम निरंजन पाया। ज्ञान काया रस भोगं रहाओ। शिव नगरी मैं आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं। सिंगी शब्द सदा धुन सो है, ऐन सपूरै नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विभूतं। हर कीरत रह रास मारी, गुरमुख पंथ अतीतं। सगली ज्योत हमारी, समया नाना वर्ण अनेकं। कौ नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। असमला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान करता वै, कर करनी कस पाइय। पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चुवाइय। बाबा मन मत वारू, नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया। अहिंस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहत गहया रहा। पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए, जाको नदर करे। अमृत का व्यापारी हो वै, क्या मत छूछै भाव तरे। गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान भया। दर दर्शन का प्रीतम होवै, मुक्त बकंठ करें के या। सिफती रता सद वैरागी, जुआ जन्म न हारै। कौ नानक सुन परथर जोगी, खीवा अमृत धारया। समला पहला खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आपे दोष न दे करता, जम कर मुगल चढ़ाया। इति मार पई कुरलाने, तैं की दर्द न आया। करता तू सपना का सोई, जे सकता शक्ति को मारे। ता मन रोशन होई रहा, सकता शी मारे पै बगे। खसमे का पुरसाई, रत्न बिगाड़ बिगोए कुत्ती। मोया सार न काई, आपे जोड़ बिछोड़े आपे वेख। तेरी वड्याई जे को ना उतराए वड्डा। साध करे मन भाणे, खसमे नदरी कीड़ा आवे। जेते चुगै दाने, मर मर जीवे ता किश पाए। नानक नाम बखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे बड़भाग। गुर कै शब्द सच्चा बैराग, खट दर्शन वरत वरतारा। गुर कै दर्शन अगम अपारा, गुर कै दर्शन मुक्त गत होए। सच आव सह मन सोई रहा, गुर दर्शन उदरै संसारा। जे को लाए भाव प्यारा, भाव प्यारा लाए बिरला कोए। गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार। सतगुरु सेवै परवार, साधार निगुरे कहो गत ना निगुरे कहो गत काई नाही। अवगुण मुठे चोटा खाई, गुर के शब्द सुख शांत शरीर। गुरमुख ताको लगे न पीर, जम काल तिस नेड़ न आवे। नानक गुरमुख साच समावे, असम लतीजा। शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुरु सेवे तिल न तमाए। निरपव दाता सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए। गुण संग्रहो विचों अवगुण जाहे, पूरे गुर कै शब्द समाए रहाओ। गुणा का गाव कहो वै, सो गुण जाने। अमृत शब्द नाम वखाण, साची बाणी सूचा होए। गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण अमोलक पाए न जाए। मन निर्मल साचा शब्द समाए, सेवड़ भागी जिन नाम ते आया। सदा गुणदाता मन वसाया, जो गुण संग्रह तिन बलहारै। जाओ दर साचै, साचे गुण गाओ आपे देवै। सहज सुभाए, नानक कीमत कहण न जाए। असमल अतीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई, चरी विछुने मेल मिलाई। आपे मेले

सुख पावो, नाम रखो गुरमत मन चीता रहाव, नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा ला गुरमत बिगसा, नाम बिना कुष्टि मो अंधा, सब नेफल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै बड़भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मल्ला चौथा राग आसा, कर सेवा के तेन हाथ, कर तंत बजावे जोगी, थोथर वाजे बेन, गुरमत हर गुण बोलो जोगी, मनुआ हर रंग पेन, जोगी हर देव मति उपदेश, जोग जोग हर हर एको वर्ता, तिस आगे हम आदेश, रहाओ गावे राग भांत बहु बोले, एव मनुआ खेला खेल, जो वै कूप संचन कौ बसदा, उठ बैल गए चर वेल, काया नगर में कर्म हर बोवो, हर जामे हरिया खेत, मनुआ अस्थिर बैल मन जो, हर सिंचो गुरमत जेत, जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी, जो देव मती तत चेल, चन नानक के प्रभांतर जामी हर लावो, मनुआ पेल, असमला चौथा, कब को पाले कुंगरू ताला, कब को बजावे रबाब, आवत जात बार खिन लागे, हों तब लागे समारो नाम, मेरे मन ऐसी भगत बने आई, हूँ हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ, कब को मिले पंच सत गायन, कब को राग तुन उठावे, मेले ते चुनते खिन पल चसा लागे, तब लागे मेरा मन राम गुण गावे, कब को नाचे पाव पसारे, कब को हाथ पसारे, हाथ पाम पसारत बिलम ते लागे, तब लग मेरा मन राम समारे, कब को लोगन कौ पति आवे, लोक पतिण ना पत होए, जन नानक हर हृदय सत्यावो, ता जय जय करे सब को, असमला चौथा, सत्संगत मिलिए हर साधु मिल, संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए, हर जन नाचो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले मेरे पाई, हम जन के तुम पाए रहाओ, हर हर नाम जपो मन मेरे, अंदन हर लिव लाए, जो इच्छो सोई फल पावो, फिर भूख न लागे आए, आपे हर अपरंपर करता हर आपे, बोल बुलाए सही संत भले तुत पावे, जिनकी पत पावे थाए, नानक आख न राजे हर गुण, ज्यों आख त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने गुण, गा कवन जिल जाए, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा, कर अठवा के काफी महला चौथा, आया मरण तुरा हो मैं रोइये, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होइये, गुरपुरे शाबास चलन जानिया, लाहा नाम सुसार शब्द समाणिया, रहाओ पूर्व लिखे डे से आए माया, चलन अज के काल तुरो फुरमाया, बिरथा जन्म तिना जिनी नाम विसारिया, जुए खेलन जग के ओ मन हारिया, जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सचे सच सच समाया, आसम हला चौथा, जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बोझ सच समाया, जिन तुर लिखिया लेख तनी नाम कमाया, दर सच्चा सच्यार महल बुलाया, रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाइये, अनदिन नाम ते आए हर गुण गाइये, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइये, हमें गर्भ गर्भ आप खुआइये, नानक आपे आप आप खुआइये, गुरमत मन प्रगा सच्चा पाइये, रागा सावरी कर सुन में के दो महला दूजा महला चौथा, सुदंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हों हर दिन हर नाम कीर्तन करो, सतगुर मको हर नाम बताया, हों हर बिन खिन पल रह न सकूं, रहाओ हमर श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर बिन रह न सकौ, हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह न सकै, तैसे हर जन क्यों रह हर सेवा बिन, किन्हों प्रीत लाई दूजा भाव रे धार, किन्हों प्रीत लाई मोह अपमान, हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पादे, नानक सिमरत हार हर भगवान, आसा वरी मला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई, हम हर बिन खिन पल रह न सकौ, जैसे कर हर बेल रिजाई, रहा हमरा मन विराग विरक्त पहयो, हर दर्शन मीत के ताई, जैसे अल कमला बिन रह न सकै, तैसे मोहि हर बिन रहन न जाई, राग शरण जगदीशन प्यारे, मोहि सरदा तुपुर हर गुसाई, जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमुख दिखाई, राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तस पाओ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटम देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहत होए साधक सिद्ध, सुरदेव मनुखा बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ,
ਇੱਕ ਫਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿੰਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੇ, ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਕੋਏ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪੈ, ਇੱਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵੈ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਕਲਪਾਵੈ ਹਮ।

हर रखे लग सतगुर पावै। तब करते तपसी पूलाए पंडित मोहे लोभ सुभाए। त्रैगुण मोहे मोया आकाश हम सतगुर राखे। दे कर हाथ ज्ञानी की होए वर्ती दास। कर जोड़े सेवा करे अरदास। जो तू कहें सुकार कुमावै जो तू कहें सुकार कुमावा। जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। असा महला पंजवा ससु ते परकीनी वाखे। देर जिठानी मुई दुख संताप। करके जिठेरे की चुकी कान। पे रखिया कीनी सुकड़ सुजान। सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया। दुर्जन मारे बैरी संगारे सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत। द्वितीया त्यागी लोगा रीत। त्रैगुण त्याग दुर्जन मईत समाने। तुरिया गुण मिल साध पछाने। सहज गुफा में आसन बांधया जो स्वरूप अनाहत बाजा। महा आनंद गुरु शब्द विचार। प्रयो स्यों राती तन सुहागण नार।

सुबिनासा जिस छूटे त्रिकटी तिस निज करवासा ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला तरन पड़े तिस लगे नकाला भ्रमते फिरे तिन किछु न पाया से अस्थिर जिन गुरु शब्द कुमाया जियो पिंड सब हर का माल नानक गुरमिल भय निहाल असमला पंजमा पुत्री तेरी विद कर थाटी जान सतकर होएगी माटी मूल संभालो अचेत गुबारा इतने कहो तुम क्या गर्वे रहाओ तीन शेर का दिहाड़ी मेहमान अवर वस्त तुझ पाए अमान बिष्टा अस्त रक्त परेटे चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वस्त बुद्ध बुझे ता होवे पाक बिन बुझे ता सदा तू सदा ना पाक कौ नानक गुर कौ कुरबान जिसते पाइये हर पुरख सुजान आसम अल्लाह पंजवा एक तुके चौपदे एक घड़ी दिन सुमको बहुत दिहारे मन रह कैसे मिलाऊं प्यारे एक पल दिन सुमको कबू ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको प्रेम मिलावे रहाओ चार पहर चौं जुगे सुमाने रहन पई तब अंत न जाने पंच दूत मिल प्रेम विछोड़ी परम परम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया समला पंजमा हर सेवा मैं परम निदान हर सेवा मुख अमृत नाम हर मेरा साथी संग सुखाई दुख सुखे सिमरी तै मौजूद जम्ब परामो को कहां डराई रहा हर मेरी ओट मैं हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसाओ गुरमुख तन खट्टी हर मेरा शाओ गुरु कृपा ते उमत आवे जन नानक हर के अंक समावे आसम अल्लाह पंजमा प्रभु हे कृपालता उमन लाई सतगुरु सेव सब फल पाए मन क्यों बैरा करेगा सतगुरु मेरा पूरा मन साका दाता सब सुख निदान अमृत सर सद ही भर पूरा रहा चरण कमल रिद अंतर धारे प्रगटी जोत मिले राम प्यारे पन सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठ्या मिलिया हर राय सुख रैण बिहानी सहज सुभाए आसम अल्लाह पंजवा कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय पाई पाहे न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतौ न जाई रहाओ तोट न आवे खुट न जाए खाए खर चमन रहे अगाए सो सच्छाओ जिस घर हर तन संचाणा इस तन ते सब जग वरसाणा तिन्हार तन पाया जिस पुरब लिखे का लैना जनानक अंतवार नाम गहना समला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाड़ परानी जो जन्मै सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्त्र है थिया रहा दिन ते सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोए सोए रहे अभागे गुरु प्रसाद कुगरला जागे कौ नानक गुण गाइया नीत मुख उज्जल होए निर्मल चीत आसम अल्लाह पंजवा नौ ने तेरा सकल निधान इच्छा पूर्व रख निदान तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वस्या लगे ना दुख रहाओ जो तू करे सोई प्रवान साचे साहिब तेरा सच फरमान जा तुद भावे ता हर गुण गाओ तेरे घर सदा सदार है न्याओ साचे साहिब अलख अपेव नानक गुरु नानक लाया लागा सेव असम अल्लाह पंजवा निकट जी कै सद ही संगा कुदरत वरतै रूप अर रंगा कर ना चुर ना मन हो मन ना मन रोबन हारा अवनासी अवगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा रहाओ तेरे दास रे कहो किसकी कान जिसकी मीरा रख आण जो लौडा प्रभ किया अजात तिस लौडे कहो किसकी तात वे मोता जा वे प्रवाह नानक दास कहो गुरु वाह असम अल्लाह पंजवा हर रस छोड़ होछ रस माता कर मैं वस्त बार उठ जाता सुनी न जाई सच अमृत काथा रार करते झूठी लग गाथा रहा वजों साहिब का से बिरानी ऐसे गुने अच्छा देव प्राणी तिस्यो लूक जो सद ही संगी कामना वह सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला ज्यों भावे त्यों कर प्रतपाला असम अल्लाह पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहां उहां उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाव भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल श्यों लागो मान सतगुरु तूठा कीनो दान कौ नानक कौ गुरु दीख्या दीन प्रभ अविनाशी घट घट चीन असम अल्लाह पंजवा आनंद विनोद परे पुर धारिया अपना कार्य आप सवारिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की परपुर धार रही सोभ जां की रहाव नाम निदान जाकी निर्मल सोए आपे करता वरना कोई जी जन सबता कै हाथ रव रहा प्रभु सब कै साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली बढ़ियाई असम अल्लाह पंजवा
ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾ ਬੋਏ ਮਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਚੋ ਹਰ ਤਨ, ਉਤਮ ਮਤ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਆਓ, ਤਿਆਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਾਗੈ ਨਾਉ ਰਹਾਓ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵਨ ਸਾਚੈ ਨਾਇ, ਅੜਸਠ ਮੱਜਣ ਸੰਤ ਧੂਰਾਏ, ਸਭ ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਕਰਤਾ ਏਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਦਾਸ ਸਗਲ ਕਾ ਛੋੜ ਅਭਿਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੀਨੋ ਦਾਨ ਅਸਮਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਤ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਨਸੀ, ਦੁਰਮਤ ਦੂਰੀ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਲੇ, ਬੂੜਤ ਘੋਰ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਿਕਸਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਰੇ ਰਹਾਉ ਮਹਾਂ ਅਗਾ ਅਗਨ ਕਾ ਸਾਗਰ, ਗੁਰਬੋਹਿਤ ਤਾਰੇ ਰਤਨਾਗਰ, ਦੁਤਰ ਅੰਧ ਬਿਖਮ ਏ ਮਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਛ ਉਕਤ ਨ ਮੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਤੋਰੀ, ਅਸਮਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਪ ਦੇ ਦੋ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਪਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ, ਆਨ ਰਸਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਨਸ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਆਨ ਰਸਾ ਮੈਂ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਦ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰ, ਆਨ ਰਸਾ ਸਭ ਹੋਛੇ ਰੇ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹਾਟ ਸਮਾਏ, ਲਾ ਕਰੋਰੀ ਮਿਲੈ ਨਾ ਕੇ, ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸੀ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਾਕ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਧ, ਈਤ ਊਤ ਕਛੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਈਤ ਊਤ ਕਥ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੀਤਾ ਹਰ ਰਸਮਾਏ, ਅਸਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੈ, ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਹੋਈ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ, ਸੇਵਕ ਮਾਵੈ ਤਾਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੈ, ਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ, ਦੂਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਿਸਾ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ, ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਪਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਆਤਮ ਸੁਧ ਬਿਖ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ, ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦਾਸਰੀ, ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੁਆਰੀ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਅਸਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁੱਪ ਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਰਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮਿਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰਨ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਮਨੀ ਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ, ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਬੈਠਤ ਊਟਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ, ਤੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ਰਹਾਉ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਵਿਕਰਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਜਨ ਲੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਛਡਾਏ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉਂ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤਾਪ ਮੂਆ ਬੇਖਾਏ ਰਹਾਉ, ਪਾਲਾ ਤਾਉ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਡਾਕੀ ਕੋ ਚਿਤ ਕਛੂ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਹੋਏ ਆਪ ਸਹਾਏ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਿਤ ਗਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਸਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਏ, ਆ ਸਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਔਖ ਦਿਖਾਇਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ, ਤਾਪ ਗਿਆ ਬਚਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਸਭ ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ, ਰਹਾਉ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਮਨ ਧਿਆਇਆ, ਸਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਾਂਛਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਬੇਲਾ ਆਈ, ਬਿਨ ਹੁਕਮੈ ਕਿਉ ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ, ਠੰਡੀ ਤਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਬਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ, ਰਹਾਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਉ ਪਾਰ ਪਰਾਈ, ਅਸਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ ਸਭੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਸਾਸਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾ ਕਾ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਲੀ, ਪੀੜ ਗਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹੇਲੀ, ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਚਰਨ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੁਹੇਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਏ ਅਤੋਲੀ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਅਮੋਲੀ, ਅਸਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਵਾਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਭਾਰੇ, ਮਿਰਤ ਸੰਗ ਭਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋਏ ਰਹੇ ਮਨੁਆ, ਸਗਲੇ ਦਿਸੈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਮਦੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਜੀ ਸੰਹਾਰੇ, ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਇਕ ਏਕਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ, ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰੇ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਅਸਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ, ਕਿਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕਰੈ ਚਤਰਾਈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਜੈ ਮੁਝਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ, ਦੇ ਸੋ ਮਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਰਹਾਉ,
जैसे जनन जठर में प्राणी ओ रहता नाम आधार अनंत करे सा सास समार ना पो है अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनस्यों प्रीत निवार चरण कमल से वीरज अंतर गुरु पूरे कै आधार गृह मंदिर महला जो दिसे ना कोई संगार जब जग जीवे कली काल में जन नानक नाम समार ऐसा करती जमला पंजवा कुंकार सतगुरु प्रसाद राज मिलक जो बन ग्रह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाख लाल लाख बह आनी आगे दरगे कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चितलाय उठत बैठत सोबत जाग सदा सदा हर त्यागिया रहाओ महा विचित्र सुंदर आखाड़े रण में जिते पवाड़े हाँ मारो हाँ बंदो छोड़ो मुक्ते एव बबाड़े आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म तर्म जुगत बहु करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कुमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी ज्यों हस्ती खाक शाने संत सजन सुनो सब मीता झूठाए उपा सारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मुए गुबारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा रागा सा कर पंजवा मल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ब्रह्म सोई सकल जगत धन अंध कहु जागे हर जन महामोहनी मगन प्रया प्रीत प्राण कहु त्याग बिरला चरण कमल अनूप हर संत मंत कहु लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वटभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुत भाव सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समर्थ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रस रसक गुण गावे मसलत मता स्याणप जन की जो तू करें करा वह रहा अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया तृप्त अगाय से जन पूरे सुख निधान हर गाया जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता जाको दया तुम्हारी हुई से शाह भले भगवंता परम मोत्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच की ना हर नाम में रंग समाया असमला पंजवा जन्म जन्म की मल तो वह पराई अपना कीता पावे यहाँ सुख नहीं दरगे टोई जमपुर जाए पचावे निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच न सके काहूँ बात है आगे ठहर ना पाया रहा किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा तहाँ विगूता जय कोई न राखे ओ किस पै करे पुकारा निंद की गत कतू नाही खसम वह पहाड़ा जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख मानना संतन टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाय कहु नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई असम अल्लाह पंजवा बाहर तोय अंतर मन मैला दोए ठावर अपने खोए यहाँ काम क्रोध मोहि व्याप्या आगे मुस मुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा वर्मी मारी साप न मरी नाम न सुनई डोरा रहा माया की किरत छोड़ गवाई भगति सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा तत जोग ना पछाने उगर गया जैसा खोटा डबू टबुआ नदर सराफा आया अंतर जामी सबके जाने उसते कहाँ छिपाया गुड़ कपट बंच निमुनिया दा बिनस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख संभाले असमला पंजवा उदम करत हो वह मन निर्मल नाच आप निवारे पंच नाले बसकत राखे मन मैं एक अंकारे तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहत शब्द बजावे रहा प्रथमे मन पर बुद्ध अपना पाछे अवर रिजावे राम नाम जब हृदय जप मुक्ते सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प तरे गुरु आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पिख लाए श्रद्धा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी नृत करे नरक निवारे ऐसी नृत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे आसम अल्लाह पंजवा अदम चंडाली पही ब्राह्मणी सुदी ते सृष्टाई रे पाताली आकाशी सखनी लह बरबूजी खाई रे कर की बिलाई अवर सिखाई मूसा देख डराई रे अज कह वस गुरकीनों के हर कुकर तने लगाई रे रहा बाज थूनिया चपरा था म्यानी करया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़े उजड़ावा थे वा अचर जलाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निरनों पाया रे माल दुलीचे बैठी ले मृतक नैन दिखा लेना तहाया रे सो ये जान कह मैं जाना जानन हार न छाना रे कौ नान गुर अम्यों पियाया रसक रसक बिगसाना रे असम अल्लाह पंजवा बंधन काट बिसारे अवगुण अपना विरुद्ध समारिया होए कृपाल मात पित न्यायी बारक ज्यमृत पारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काट लिए महापवजलते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हल्त पल्त सुख पाइये असास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइये
भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे छिजै न जाए किछ भौ न व्यापे हर तन निर्मल गांठे अंत काल प्रभे सहाई इत उतरकन हारे प्राण मीत हीत धन मेरा नानक सदबल हारे असमल ला पंजवा जा तू साहिब ता भौ के हा हाँ तुद बिन किस सलाही एक

गुरु प्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर क उसके बड़े ठगाऊं छोड़े नाई, बाप ना माऊ मिली अपने, उनले बांधे गुरु कृपाते मैं सगले साधे।

तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे सचे नाल तेरे गंढ लग गया गुरमुख संभाले कह नानक जै मन धाम दा तै हर तेरा सदा नाले सतगुरु मिले धावित थमिया निज कृपा वसया आए नाम जय नाम लै नाम रे समाए धाव थमे सतगुरु मिले दसवंद्वार पाया तथे अमृत भोजन सहज धन उपजै जित शब्द जगत थम रहाया तै अनेक बाजै सदा आनंद है सचरे समाए यूं कह नानक सतगुरु मिलिया धव थमिया निज कर वसिया आए मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान मूल पछाण है तां सजाणै मरन जीवन की सुजी होई गुरप्रसादी एक जाणै तां दूजा भाव न होई मनसा दे आई बजी वधाई तां प्रवाण यूं कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन तू गर बाटिया गर बलदिया जाए माया मोहिनी मोया फिर बिजुनी पावै गर्भ लागे जाए मुग्ध मन अंत गया पछतावे अंकार तिशन रोग लगा बिरजन गवावे मन मुख मुग्ध चेत नाही अगे गया पछतावे यूं कह नानक मन तू गर बाटिया गर्भ लदया जावे मन तू

उठ वंजो वटावड़े आ तैं क्या चर लाया मुल पुनड़ी क्योंकि कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तुह तो माया कृपा पवितया धन परम भसम ढेरी जमै हेरी कल पपड़े जिते आ मल जो मन छोटी वैसी रेह पैन खाया नानक कामण संग जुल।

जाए कहत कबीर सुनो रे संतो पै सागर कहताई इस बंदे सिर जुलम होत है जम नहीं हटे गुसाई दो तुके एको अंकार सतगुर प्रसाद असा श्री कबीर जियो के चौप दे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पड़े पड़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बिलोवना बिलोव मेरे भाई सहज बिलोव जैसे तत् न जाई रहाओ तन कर मटकी मन मैं बिलोई इस मटकी मैं शब्द संजोई हर का बिलोवना मन का विचारा गुर प्रसाद पावे अमृत तारा कहो कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा सा बाती सुखी तेल निकुटा मंदल ना बाजे नट पै सुता बुझ गई अगना निकस्यो तू वा रव रहे आ एक अवर नहीं दुआ रहाओ टूटी तंत ना बजर बाब भूल मिगारियो अपना काज कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो विसरियो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सोत अपराध करत है जिते जननी जीत ना राक्ष तेते रमैया हो बारक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा रहाओ जे अत क्रोप करे करताया ता पी चीत ना राक्ष माया चिंत भवन मन परियो।